सुप्रभात। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति। विद्या वह धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही बांटने से यह कम होता है। शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है, हमारे विचारों को नई दिशा देती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें सही और गलत में अंतर समझना भी सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी योगदान देता है। इसलिए हमें हमेशा नई नई बातें सीखने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता और गुरुजन हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनका सम्मान करना और मन लगाकर पढ़ाई प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। ज्ञान ज्योति। श्रोताओं, अगली जो प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु मनन करें, प्रभु चिंतन करें और दिन की शुरुआत करें ईश्वर वंदन से।

ईश्वर हमारा सदैव ही मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। हे प्रभु, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलाए रखना, हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहना।

मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन हमें अच्छे कर्म करने, दूसरों की सहायता करने के लिए और ईश्वर का स्मरण करने के लिए मिला है। जब हमारे मन में भगवान राम का नाम बसता है, तब हमारे विचार पवित्र बन जाते हैं और जीवन में शांति तथा सद्भाव आ जाता है।

राम नाम की महिमा न्यारी, राम नाम की महिमा न्यारी, जिसने किया गुणगान उसकी नैया पार उतारी। भगवान राम मर्यादा, सत्य, धैर्य और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य और धर्म का मार्ग बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।

आज की भाग दौड़ भरे जीवन में यदि हम प्रतिदिन कुछ समय प्रभु स्मरण, प्रार्थना और अच्छे विचारों के लिए निकालें तो हमारा जीवन सुखमय और सफल बन सकता है।

प्रार्थना केवल शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे हृदय की सच्ची भावना होते हैं। सुबह की प्रार्थना हमारे दिन की शुरुआत को और भी सुंदर और सकारात्मक बना देती है। हमें प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण और अच्छे कार्यों के लिए अवश्य निकालना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:40 हुए हैं। आप लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से बस थोड़ी देर में यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। 8 बजे समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की करेंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा 8:30 पर और 8:35 से हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सुबह के 10 बजे तक। इन कार्यक्रमों के दौरान 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 10 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लघु वार्ता सुनिएगा 10:05 पर, विषय रहेगा कागज़ बचाएं और पर्यावरण बचाएं। बातें आपकी गीत हमारे, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10:15 पर। 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे और 11:05 से दोपहर 12 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। दोपहर 12 बजे सुनिए महिला बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत, सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और दिन के 1 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। इन कार्यक्रमों के दौरान 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और 3 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

शाम 5 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 5:05 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। युवा साथियों के लिए युवा मंच कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर। 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे और 6:05 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने खेती बाड़ी, ये कार्यक्रम सुनेगा 6:30 पर। 7 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। भक्ति संगीत का समय रहेगा 7:05 पर। रौनका गराएं दियां, ये कार्यक्रम सुनेगा 7:25 पर। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। इन कार्यक्रमों के दौरान समाचार संध्या का अंक 8:45 पर और 9 बजे News@9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। विज्ञान जगत, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। देर रात 11 बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: दोस्तों, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 7 बजे हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र BSF सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्री मोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो VJP इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति। येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्।

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, घनी खम्मा, दुआ वणक्कम, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग हमीरपुर। बिल्कुल हमें मालूम है हमारे दोस्त जो हैं वो सुबह से हैं हमारे साथ जुड़े हैं। ईश्वर वंदना के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, आज के दिन की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन एक अच्छा विचार जो होता है हमारे पूरे दिन को अच्छा बना देता है। पर्वत चीर के जाने वाली सरिता को ऐसा लगता है सागर की खारी बाहों में उसे पूर्णता मिल जाएगी। वो जिसके कटिबंधों जैसे तट उत्सव की मूर्ति लगते, झांझर बांधे चरण सलोने पनिहारों की स्फूर्ति लगते, वो जिस पर चैतन्य डोलता घाट घाट पर पौड़ी बांधे, भार सहज ढोते हैं देखो बहदी नदिया के दो कांधे, वो जीवन की सहज चेतना आंसू के घर को आएगी, सागर की खारी बाहों में उसे पूर्णता मिल जाएगी। मीठी नदिया सोच रही है खारा सागर ही जीवन है, गौर फरमाइएगा, मीठी नदिया सोच रही है खारा सागर ही जीवन है, अपनी ही तासीर भुला दो, हाय ये कैसा अलहड़पन है। वो जिसने जीवन सींचा है गांव गांव पगडंडी जाकर, वो जिसने जीवन सींचा है गांव गांव पगडंडी जाकर, उसने भी भ्रम पाल रखा है पूर्ण लगूंगी स्वामी पाकर, पूर्ण लगूंगी स्वामी पाकर, अपना ही सुस्वाद भुलाकर जाने सरिता क्या पाएगी, अपना ही सुस्वाद भुलाकर जाने सरिता क्या पाएगी, सागर की खारी बाहों में उसे पूर्णता मिल जाएगी, उसे पूर्णता मिल जाएगी। जी बिल्कुल दोस्तों, जिनके उजाले इस आस्था से जलते हों वो सोचने से डरते हैं। जी हाँ, तर्क यही है इस खूबसूरत सी कविता का कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हर इंसान को ऊपर वाले ने एक खूबसूरत सी नेमत से बख्शा है, और बिल्कुल हमें अपने आप को, अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, यही सिखाता है हमें जीवन, अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और निरंतर आगे बढ़ें, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। तो बिल्कुल इसी कामयाबी की कामना के साथ आइए सुनते हैं खूबसूरत संगीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: जी दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हैं FM हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर। चलिए चलते हैं ब्लैक फ्लैश बैक में और जानते हैं क्या हुआ था आज के दिन खास, बता रहे हैं आपको आज का इतिहास। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण

रूप से याद किया जाता है 27 मई का दिन। यदि हम बात करें 1647 की, तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एलिस यंग जो थी वो पहली महिला थी जिन्हें फांसी दी गई थी। 1703 में रूस के जार पीटर द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की नींव रखी थी और 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध पुलों में से एक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को डुबो दिया था 1941 में। ९९४ में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक, जिनका जन्म हुआ। 1931 में ओएनवी ग्रुप, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, 1931 में इनका जन्म हुआ। नितिन गडकरी, भारत के वरिष्ठ राजनेता और केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, भारतीय राजनीतिज्ञ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्म हुआ आज ही के दिन 1957 में। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, मुख्य कोच और प्रसिद्ध कमेंटेटर रवि शास्त्री जी का जन्म हुआ 1962 में आज ही के दिन। मुंबई के पास स्थित आधुनिक नहावा शिवा को राष्ट्र को समर्पित किया गया 1989 में। और मुंबई में ही भारत के प्रसिद्ध तारा पोरवाला एक्वेरियम की शुरुआत की गई थी 1951 में आज ही के दिन।

0: तो दोस्तों ये तो था आज का इतिहास, और हम आज मना रहे हैं विश्व मार्केटिंग डे भी, विपणन दिवस, जिसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे अगले सेगमेंट में। सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर, आपके अपने फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मना रहे हैं हम दोस्तों विश्व विपणन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मार्केटिंग। हर साल 27 मई को वैश्विक स्तर पर यह दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत मुख्य रूप से बिजनेस, समाज और हमारी दैनिक जीवन शैली में मार्केटिंग यानी विपणन के सकारात्मक प्रभाव और उसकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए की गई है। इस खास तारीख का चयन आधुनिक मार्केटिंग के जनक माने जाने वाले यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग माने जाने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर और लेखक फिलिप कोटलर के सम्मान में किया गया। उनका जन्म हुआ था 27 मई 1931 को और कोटलर ने मार्केटिंग के क्षेत्र में 80 से अधिक किताबें लिखी और पूरी दुनिया को सिखाया कि मार्केटिंग केवल उत्पाद बेचना नहीं बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें सही मूल्य देना है।

को आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा यूरोपियन मार्केटिंग कन्फेडरेशन द्वारा साल 2023 में की गई थी, जिसे कोटलर इम्पैक्ट और अन्य वैश्विक संगठनों का समर्थक भी माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर के मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, रणनीतिकार, कंटेंट क्रिएटर्स और विज्ञापनदाताओं के काम की सराहना करना और समाज में एक जिम्मेदार व नैतिक मार्केटिंग यानी कि एथिकल मार्केटिंग को बढ़ावा देना। मार्केटिंग केवल विज्ञापन नहीं है, ये ब्रांड और ग्राहकों के बीच मानवीय संबंध और भरोसे की कहानी बुनने की कला है दोस्तों। यह दिन उद्योग में आ रहे नए बदलावों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच इंसानी क्रिएटिविटी की प्रासंगिकता को चर्चा करने का अवसर भी देता है और मार्केटिंग नए उद्योगों को खड़ा करने, रोजगार पैदा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों, तो फिलिप कोटलर के सिद्धांतों के बारे में जरूर पढ़ें, जानें। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर, आपके अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: RBI कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आप इस वक्त जुड़े हैं FM हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, हमारा आज का सेगमेंट जो है हीरो ऑफ द डे, कुंदकुरी वीरे सालंगम, जिनका जन्म हुआ 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक प्रमुख समाज सुधारक और लेखक। उन्हें आंध्र का राजा राममोहन रॉय और आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक माना जाता है, जिन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध के साथ साथ महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। जीवन और पृष्ठभूमि उनकी जो है वो देश के प्रति हमेशा वफादार रही। उनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजा मंडरी राज महेंद्र वरम के एक रूढ़ीवादी ब्राह्मण परिवार में। बहुत कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। तेलुगु, संस्कृत और हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उनके सुधारवादी विचार ब्राह्म समाज, विशेष रूप से राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आदर्शों से अत्यधिक प्रभावित थे। मुख्य सामाजिक योगदान जो उनका रहा, वो समाज के भारी विरोध का सामना उन्होंने किया। 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया। इसके लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और अपने जीवन काल में लगभग 40 विधवाओं के विवाह संपन्न कराए। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई स्कूलों की स्थापना भी की और बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। उन्हें दक्षिण भारत का विद्यासागर भी कहा जाता है। उनके महान समाज सुधार कार्यों के कारण उन्हें अक्सर दक्षिण भारत का विद्यासागर कहा जाता है। और 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों में से वे एक थे। साहित्य और पत्रकारिता में तेलुगु में गद्य साहित्य उन्होंने, आधुनिक तेलुगु गद्य का जनक भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गद्य ब्रह्मा की उपाधि भी दी गई है। उनकी रचना राजशेखरा चरित्रमु को तेलुगु का पहला उपन्यास माना जाता है। समाज में फैले अंधविश्वासों, भ्रष्टाचार और कुरूतियों पर करारा व्यंग्य करते हुए उन्होंने विविध वर्धनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और महिलाओं, शिक्षा और अधिकारों के लिए उन्होंने सतीहित बोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली। वे जीवन भर समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहे और 27 मई 1919 को महान सुधारक का निधन हो गया। ये थे हमारे आज के हीरो ऑफ द डे, कुंदकुरी वीर सालंगम, जिन्होंने अपनी विचारधारा से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं।

प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों की ओर। दोस्तों, अब दवा की एक खुराक से ही घट जाएगा हार्ट अटैक का खतरा। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने जीन एडिटिंग एक नई दवा बनाई है और इस दवा की सिर्फ एक खुराक देने से शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत लंबे समय के लिए कम हो जाता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे इस शोध के मुताबिक अगर बड़े अध्ययनों में भी ये नतीजे आए तो ये थेरेपी दिल की बीमारियों से बचाव का स्थायी तरीका बन सकती है। इस अध्ययन का नेतृत्व वर्ल्ड थेरेप्यूटिक्स के CEO डॉक्टर शेखर किथ्रेशर ने किया है और अध्ययन के मुताबिक ये जीन थेरेपी दिल की बीमारी पर आजमाई गई है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉन H.P. अलेक्जेंडर ने कहा कि दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल का स्थायी इलाज गेम चेंजर हो सकता है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों की जीन थेरेपी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि मंजूरी मिलने पर इस दवा को बेहद महंगा बनाने का मकसद नहीं है। कंपनी इसे भविष्य में सामान्य और प्राथमिक उपचार का हिस्सा बनाने की बात कर रही है।

देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और रेबीज के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा और जीने का अधिकार सर्वोपरि है। और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यह भ्रम भी फैल रहा है कि अब कोई भी आम इंसान आवारा कुत्तों को मार सकता है या कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन फैसले के मुताबिक किसी भी आम नागरिक को आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता करने और उन्हें लाठी डंडे से पीटने का, खुद से जहर देकर मारने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु जन्म नियंत्रण नियमवली के तहत दंडनीय अपराध है। कोई भी कार्रवाई सिर्फ तय प्रशासनिक संस्थाओं के जरिए ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 131 पदों के फैसले में बेहद स्पष्ट और कड़े नियम बनाए हैं और कहा है कि केवल उन्हीं कुत्तों को दया मृत्यु दी जा सकती है जो रेबीज से पीड़ित हैं, लाइलाज रूप से बीमार हों या अत्यंत आक्रामक हो चुके हों। इसके लिए कोर्ट ने सरकारी पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच और वैधानिक प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया है। भीषण गर्मी और स्कूलों की छुट्टियों के बीच उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड भीड़ पहुंचने से व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और अब तक करीब 35 लाख यात्री और पर्यटक राज्य में पहुंच चुके हैं। इसमें चार धाम यात्रा के 20 लाख यात्री और ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, कैंची धाम सहित अन्य स्थलों पर पहुंचे 15 लाख से अधिक पर्यटक शामिल हैं। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की उम्मीद बन रही है। यूरोपीय मौसम एजेंसी यानी कि 15 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 29 मई से 5 जून तक भारतीय उपमहाद्वीप के करीब 80-90% हिस्से में प्री मॉनसून बारिश हो सकती है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का कहना है कि इस दुनिया के प्रमुख मौसम मॉडल में माना जाता है। ये सैटेलाइट समुद्री और वायुमंडलीय डेटा के आधार पर मौसम का अनुमान तैयार करता है। ECMWF मॉडल की तस्वीर में अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी से लगे इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत दिख रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। फिलहाल उत्तर पश्चिम मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में गर्मी का असर ज्यादा है। सोमवार को कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस तक रहा और देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा और महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी यूपी में गुरुवार तक हीट वेव की चेतावनी है। 29 मई से तापमान घटने और हीट वेव से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

जलवायु परिवर्तन, कंक्रीट के जंगल और प्लास्टिक प्रदूषण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जैव विविधता का संरक्षण अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पेड़ लगाना, पानी बचाना और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह छोड़ना, इस दिशा में हमारा सच्चा योगदान होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर सीधे आम आदमी के मासिक बजट और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपना पैसा बचाने के लिए साइकिलिंग, कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी स्मार्ट यात्रा को अपनाइए और सिग्नल पर वाहन बंद रखना बेहतर विकल्प है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस की लुई 19वें को दुनिया में सबसे कम अवधि का शासक माना जाता है। फ्रांस में जनता के विद्रोह को देखते हुए चार्ल्स 10वें, जी हाँ, उन्होंने गद्दी त्याग दी थी और पुत्र लुई को सत्ता की कमान सौंपी थी, लेकिन जन आक्रोश को भांपते हुए 20 ही मिनट में लुई ने भी राजपाट त्याग दिया था। 1830 के जुलाई माह में लुई 19वें बने थे फ्रांस के शासक। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और खेती को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम 2026 लागू किया है। विधि विभाग ने आज इसकी सूचना पिछले कल जारी कर दी है और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून अस्तित्व में आया है। सरकार का मानना है कि आयोग के गठन से कृषि, बागवानी, पशुपालन और संबंध क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी और किसानों की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से हो सकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने विधानसभा से एक बिल पेश किया था जो अधिसूचना के जारी होने के साथ लागू हो गया। भारत चीन सीमा पर स्थित ऐतिहासिक शिपकीला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार यानी कि बॉर्डर ट्रेड को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। विदेशी मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति मिलने के बाद किन्नौर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के व्यापार सत्र के अपने सभी रणनीतिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। किन्नौर के उपायुक्त एवं सह व्यापार प्राधिकरण डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी 1 जून से भारत चीन बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होने जा रहा है। इस व्यापार सत्र के लिए प्रशासन के पास अब तक करीब 55 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के 16 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैदान को एक ही सीजन में इतने बड़े और हाई प्रोफाइल मुकाबलों की मेजबानी मिली है। पंजाब किंग्स के 3 घरेलू मुकाबलों के साथ साथ पहली बार आईपीएल का क्वालिफायर 1 मैच भी धर्मशाला में आयोजित किया गया। इससे पहले यहाँ केवल लीग मुकाबले ही खेले जाते रहे। इस ऐतिहासिक आयोजन ने धर्मशाला को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ अदालत के दबाव में पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पर्यावरणीय शासन केवल अदालत के हस्तक्षेप या अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही के डर से चलने वाली प्रतिक्रियात्मक कवायद नहीं बन सकता। राज्य और उसकी एजेंसियों का संवैधानिक दायित्व ये है कि वे पर्यावरणीय नुकसान की आशंकाओं को पहले से भांपे और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान से बचाएं और संवेदनशील क्षेत्रों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को।

0: तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर लौट कर आते हैं हम सभी के रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड।

सुप्रभात हमीरपुर, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को लू के येलो अलर्ट के बीच भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में रिकॉर्ड जो है वो 78.81% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 1293 पंचायतों में मतदाताओं ने गांव की सरकार चुनने में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। वर्ष 2021 के मुकाबले इस बार पहले चरण में 1.81% अधिक मतदान हुआ है, जबकि वर्ष 2015 में 66% मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में राज्य किसान आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यपाल ने हिमाचल विधानसभा में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही राज्य किसान आयोग के गठन के लिए नया कानून हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अस्तित्व में आ गया है और विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की लेह केलांग दिल्ली बस सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह HRTC के केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित शर्मा ने हरी झंडी दिखा करके बस को लेह के लिए रवाना किया। पहले दिन बस में करीब 12 यात्री सवार थे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच कई क्षेत्र लू की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, सिरमौर में पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया और आज भी 8 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को कंप्रेस नेचुरल गैस के दाम फिर 2 रुपए बढ़ गए। बीते 12 दिन में CNG की कीमतों में यह चौथी वृद्धि है।

0: कटलर पी वी सिंधु ने दुनिया के छठे नंबर की इंडोनेशिया खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-18 से हराकर सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 30 मई को ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट की ओर से युगांडा के खिलाफ टी20 मैच खेलते नजर आ सकते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट युगांडा के साथ 5 साल का MOU साइन किया गया है। संघ के सचिव उन्मेष खानगुल ने बताया कि सूर्य टीम का हिस्सा है और वे खेल सकते हैं। युगांडा को मुंबई दौरे पर 4 वनडे और 4 T20 खेलने हैं। महाराष्ट्र की 16 वर्षीय अनिका दुबे ने चीन में हुई एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है और अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में मलेशिया की हरलीन टीम से हराकर उपविजेता रही। पुणे में गोल्डन गर्ल नाम से मशहूर अनिका ने 14 साल की उम्र में भी एशियाई पदक जीता। अब मात्र 2 साल बाद वे फिर पदक पाने में सफल रही। सियोल ओलंपिक 1988 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व तीरंदाज श्याम लाल मीणा का लंबी बीमारी के बाद 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मीणा ने 1987 में एशियाई चैंपियनशिप में लिम्बा राम और रजत हल्दार के साथ पुरुष टीम का कांस्य पदक जीता था, जिसे भारत को सियोल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे आज के इस प्रोग्राम का समय हो रहा है पूरा। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहेंगे सुप्रभात, हमीरपुर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 MHz पर। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: घर होके आया देखकर हैरान रह गया। कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की? मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार प्रभात के साथ मैं

0: मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों

0: को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
4: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
7: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
8: I want to make a statement in the face of the country. Under the law, देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
7: The committee will submit its report within one year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
6: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity of electoral rules and preventing duplication or inclusion of ineligible voters. After hearing the parties, the CJI Surya Kant-led bench reserved its verdict on January 29th.
9: Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. More from our correspondent.
5: The Central Board of Secondary Education

0: for Royal Challengers Bengaluru, Jacob Duffy scaled 33 wickets, while Bhuvaneshwar Kumar, Razeek Salamdar and Krunal Pandya took 2 wickets each. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. Put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted a massive 254 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Rajat Patidar top scored with an unbeaten 93 runs of 33 balls. Virat Kohli and Krunal Pandya added 43 runs each. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder took 2 wickets each. Rajat Patidar was adjudged the player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils 4 key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes, and the Hindu says panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. 8:30 हुए हैं. लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक. आज के इस अंक में पहाड़ों की खूबसूरती वादियों के बीच 8 जून से 12 जून तक होने वाला शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल इस बार संस्कृति, कला, खेल और संगीत के जरिए अपनी अलग पहचान बनाएगा. 5 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल आयोजन, फूड फेस्टिवल, डॉग शो, फिल्म फेस्टिवल, कला उत्सव और हेलीकॉप्टर जॉय राइड जैसी कई आकर्षक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी. महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में महानाटी, जुम्बा, छम डांस, मल्लखम्ब प्रदर्शन और टीपा धर्मशाला की विशेष प्रस्तुति जो तिब्बतीयन संस्थान द्वारा दी जाएगी, सड़क सुरक्षा अभियान और रंगों की दुनिया जैसे 8 फेस्टिवल शामिल रहेंगे. समर फेस्टिवल से पहले डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों के बारे में बताया. लोक निर्माण विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे सहायक अभियंताओं के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग को जल्द ही 30 नए सहायक अभियंता मिलने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने नियुक्तियों से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विभाग में जेई को पदोन्नत कर सहायक अभियंता बनाया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए 2 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का फैसला दिया है। इस फैसले से क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी श्रेणी समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। ये मामला उन कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं से जुड़ा था जिन्हें पहले अनुबंध आधार पर रखा गया था और बाद में नियमित किया गया। कर्मचारियों का तर्क था कि संशोधित वेतन नियमों के तहत उन्हें भी 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद उच्च वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। जनजातीय जिला किन्नौर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी सेब बागवानी के सफल प्रयोगों ने हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं। शोध पत्र एन एप्पल अ डे द इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एप्पल कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में इन प्रयोगों के भविष्य की सेब खेती के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। यह अध्ययन डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और डॉक्टर परमार विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र शरबो से जुड़े बागवानी विभाग के वैज्ञानिकों एवं बागवानी अधिकारियों ने किया है। शोधकर्ताओं ने शोध के अनुसार बीज वाले रूट स्टॉक पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रणाली अपनाने को पौधों में केवल 3-4 वर्षों में फल उत्पादन शुरू हो गया था। इसे अपनाने के बाद और पारंपरिक बागानों में उत्पादन शुरू होने में 15-20 वर्ष तक लग जाते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाले सेब प्राप्त होंगे। हिमाचल में बढ़ती गर्मी के बीच कई क्षेत्रों में लू की चपेट में। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, सिरमौर में पारा 35 डिग्री पार कर गया। इन जिलों में मंगलवार को गर्म हवाओं ने लोगों को परेशानी में डाला और आज भी प्रदेश के 8 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेजेस और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में 1 अप्रैल 2026 के बाद तैनात हुए सहायक आचार्यों की छुट्टियां 11 दिन कम कर दी हैं। अब इन्हें साल में 35 दिन की छुट्टियां ही मिलेंगी। सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक सहायक आचार्यों को गर्मियों में 7 और सर्दी में 28 दिन का अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विभाग ने फैकल्टी सदस्य चिकित्सकों को साल में ही दी जाने वाली एकेडमिक लीव भी 25 दिन से घटाकर 1 सप्ताह कर दी है। ये आदेश सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस दोनों पर लागू होंगे।

0: सचिवालय में नए भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री का कार्यालय अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम और उनके निजी सचिव का कार्यालय सचिवालय के G21 और G22 यानी कि G21 और G22 कमरों से संचालित किया जाएगा। और सामान्य प्रशासन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को 5 महीने के भीतर नए कार्यालय का काम करने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन और इला अरुण की आवाज़ में आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से ये गाना, जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

टैक्सी नंबर 9211 फिल्म से आप सुन रहे हैं अदनान सामी की आवाज़ में गाना विशाल ददलानी की बोल है और विशाल शेखर का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का गाना। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद का दिन है। आज़ादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी स्मृति को सादर नमन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉक स्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में ये गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

ना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाज़ों में अन्विता गुप्तन के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर 9:20 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85% रहा मतदान। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा। 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख। कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में

0: प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरैन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच, धर्मा व परलोक पंचायतों का बीडीसी सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
1: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में अब प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिनमें 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में मां ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। उन्होंने राज्य सरकार, पर्यटन मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों से आह्वान किया है कि वे इस पवित्र स्थलों की पवित्रता और धार्मिक सार को बनाए हुए तीर्थयात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट की बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि केवल 4-5 दिनों के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना राज्य सरकार की गलत कार्यशैली और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पिछले 1 वर्ष से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले इनकी मुख्य सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति करना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पद पर अल्पकालीन नियुक्ति अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव डालेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रतिदिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है। पर्यटक जहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। पर्यटक कुल्लू में जहां रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन व अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थित झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इनकी भारी भीड़ देखी जा सकती है। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा मनाली के होटलों की ऑक्यूपेंसी लगभग 90% तक पहुंच चुकी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान भेजे गए हैं तथा पंचायत चुनाव समाप्त होते ही और भी जवानों की तैनाती की जाएगी। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: HPCL स्टेडियम धर्मशाला में

0: बीती रात हुए आईपीएल क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने पहले चरण में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में लू के बीच रिकॉर्ड 78.83% मतदान, 1293 पंचायतों में चुनी गांव की सरकार। दैनिक जागरण के शब्द है, ग्रामीण संसद के लिए जमकर पड़े वोट। हिमाचल दस्तक लिखता है, कुल्लू में सबसे अधिक 84 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 69% मतदान। पंजाब केसरी ने खबर दी है, शिपकीला दर्रे से 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा व्यापार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिटायरमेंट से सिर्फ 5 दिन पहले आईएएस संजय गुप्ता बने सीएस, अभी था सीएस का अतिरिक्त कार्यभार। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लिया आईपीएच मुकाबले का आनंद। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भीषण गर्मी, 6 जिलों में लू, 28 मई से राहत के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85 रहा मतदान प्रतिशत। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा, 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख, कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 9:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से आप सुनेंगे अब विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे ओ हो जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह।

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो। अयो अयो।
0: सन 1965 फिल्म

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां ये तन्हा

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है लघु वार्ता, कागज बचाएं पर्यावरण बचाएं।

कागज निर्माण अलग अलग सेल्यूलोज रेशों से बने एक पतले घोल को छलनी जैसी जाली से छाना जाता है, जिससे आपस में उलझे हुए रेशों की एक परत बन जाती है। इसके बाद इस परत से पानी को दबाव, सक्शन, वैक्यूम या गर्मी की सहायता से और अधिक हटाया जाता है, और सूखने के बाद एक समतल, समान और मजबूत कागज की शीट प्राप्त होती है। हाथ से बने कागज को आज भी उसकी विशेषता, अनोखेपन और प्रत्येक शीट को बनाने में लगने वाली कुशल कारीगरी के कारण सराहा जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक उत्पाद कम कीमत पर अधिक समानता और पूर्णता प्रदान करते हैं। कागज बनाने की जो प्रक्रिया है, पेड़ से लेकर के कॉपी या किताब का जो पन्ना है, पेड़ों की कटाई और छटाई, सबसे पहले उचित प्रजाति के पेड़ों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसकी कटाई और छटाई होती है। मशीनों द्वारा उनकी छाल को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। फिर छोटे टुकड़े किए जाते हैं। लकड़ी को बड़ी मशीनों से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इसकी बनाई जाती है लुगदी यानी पल्प, और इन टुकड़ों को रसायन और पानी के साथ बड़े डाइजेक्टर चैम्बर में उबाला जाता है और इससे लकड़ी के कठोर रेशे अलग हो जाते हैं और एक गाढ़ा मुलायम पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर होती है इसकी ब्लीचिंग। इसका रंग प्राकृतिक रूप से भूरा होता है। सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्लोरीन से इसे ब्लीच किया जाता है। पल्प में पानी और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर उसे बहुत पतली जाली पर फैलाया जाता है और रोलर्स द्वारा पानी को निचोड़ दिया जाता है और फिर उसको सुखा दिया जाता है। पतली परत को गर्म ड्राइंग सिलेंडर से गुजार कर सुखाया जाता है और बाद में इसे बड़े बड़े रोल्स में लपेट दिया जाता है और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग आकार में काट दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से एक कागज़ को बनाने की प्रक्रिया चलती है और हम क्या करते हैं। इतने सारे पेड़ काटे जाते हैं कागज़ बनाने के लिए, तो क्या आप जानते हैं 201 टन कागज़ बनाने के लिए लगभग 17 पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, वर्षा कम होगी, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, और इसलिए आज का हमारा संदेश यही है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही कागज़ इस्तेमाल करें और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी, क्योंकि पेड़ों की हरियाली से धरती मुस्कुराती है, कागज़ की बर्बादी से प्रकृति रो जाती है। कम कागज़ जब उपयोग होगा, हरियाली का योग होगा। मिलकर शपथ ये लें कि पेड़ों को अपना कटने दें, कागज़ बचाएँ, पेड़ बचाएँ, स्वच्छ सुंदर हम ये भारत बनाएँ। हम किताबें, कॉपियां, अखबार, रसीदें और पैकेट हर जगह कागज़ का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह कागज़ आता कहाँ से है। कागज़ बनता है पेड़ों से और बड़ी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। जंगल इसीलिए कम होते जा रहे हैं और जब जंगल कम होंगे तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। जंगलों के कम होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वर्षा कम होगी, मिट्टी का कटाव होगा और जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। इसलिए कागज़ बचाना केवल पैसा बचाना नहीं है दोस्तों, बल्कि धरती को बचाना है। पेड़ रहेंगे, जीवन रहेगा, धरती पर खुशहाली रहेगी। एक ही नारा, एक अभियान, कागज़ बचाओ, बचाओ जहान। अब हम कागज़ बचा कैसे सकते हैं। कई बार हम एक तरफ लिखकर पन्ना फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों का उपयोग करें, उन्हें रफ कॉपी बनाया जा सकता है। उनसे रफ कॉपी बनाई जा सकती है, जहाँ संभव हो नोट्स मोबाइल या कंप्यूटर में रखें। ज़रूरत होने पर ही प्रिंट करें, अनावश्यक प्रिंट आउट ना लें और ज़्यादातर डिजिटल माध्यम बनाएं। पुराने अखबार और कागज़ रिसाइकल करें, रिसाइकल से नए कागज़ बनाए जा सकते हैं। तो नो वेस्ट पेपर अभियान हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपने ऑफिस में, इंस्टीट्यूट्स में या जो भी आपके कार्यालय हैं, वहाँ पर हम पुराने कागज़ जो हैं उसे रिसाइकल कर सकते हैं। और स्कूल्स में कुछ ही महीनों में इतना कागज़ बचाया जा सकता है जिससे कि हम 50 नए पौधे परिसर में लगा सकते हैं। यदि हर स्कूल, हर घर ऐसा करेगा तो हमारा देश कितना हरा भरा बन सकता है, ज़रा सोचिए। तो फिर कागज़ बचाइए, पर्यावरण बचाइए, पेड़ लगाइए, धरती सजाइए। और अगर हर बच्चा ये ठानेगा, हर व्यक्ति ये ठानेगा कि हम कागज़ नहीं गंवाएंगे, तो हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने में। याद रखिए दोस्तों, प्रकृति ने हमें स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। आज बचाया गया एक कागज़ कल बचाएगा एक पेड़। तो आइए संकल्प लें कि कागज़ का सही उपयोग करेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और दूसरों को भी हम जागरूक बनाएंगे। धरती माँ की यही पुकार, हरियाली से हो संसार, कागज़ बचाओ, यही है विश्व का आधार, यही है भविष्य का आधार।
दोस्तों, हम अपनी पुरानी किताबें दूसरों को दे सकते हैं, लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं, टिश्यू पेपर नैपकिन का कम उपयोग, जहां संभव हो कपड़े का रुमाल का उपयोग करें, रद्दी कागज़ को फेंकने के बजाय रिसाइकिल करें, ज़रूरत होने पर ही हम प्रिंट आउट लें, सजावट में कागज़ की बर्बादी ना करें, अनावश्यक पोस्टर पर्चे और रैपिंग पेपर कम इस्तेमाल करें, ऑनलाइन बिल और ई रसीदें लेने की आदत डालें, स्कूल और घर में कागज़ बचाने की आदत सिखाएं, बच्चों को भी ये सिखाएं और खुद भी कागज़ बचाएं। जितने अधिक पेड़ होंगे पर्यावरण उतना ही सुरक्षित होगा। तो कागज़ बचाएं, पेड़ बचाएं और धरती को हरा भरा बनाएं, क्योंकि कागज़ का हर एक पन्ना पेड़ों से मिलता है, पेड़ों से ही जीवन सारा धरती पर खिलता है। बिन सोचे जो कागज़ फाड़े वे नुकसान पहुंचाते हैं, हरे भरे सुंदर जंगल भी धीरे धीरे घट जाते हैं। आओ मिलकर शपथ ये लें, व्यर्थ कागज़ नहीं गवाएंगे, दोनों तरफ लिखेंगे हम, पेड़ों को कुछ इस तरह बचाएंगे। कागज़ बचाना सेवा है, धरती माँ का मान है, हरियाली से ही अपना सुंदर हिंदुस्तान है, सुंदर हिंदुस्तान है। तो कागज़ का उचित प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें, और कल को यदि हमें संवारना है तो पर्यावरण को संभालना ही होगा। कागज़ को अगर बचाएंगे तो पेड़ों की जान बचाएंगे, और पेड़ों से ही कागज़ मिलता है, पेड़ों से ही वातावरण सजता है। कागज़ बचाने के हेतु जंगल को उजाड़ा जाता है, पर्यावरण का सौदा करके पेड़ों को काटा जाता है। कागज़ का बच्चों न्यूनतम उपयोग करो, कागज़ का हम सब भी न्यूनतम उपयोग करें, वृक्षों की हम जान बचाएँ, कागज़ का नुकसान हमें पेड़ों से दूर कराता है। तो जागरूक हो जाइए, कागज़ के दुरुपयोग को बचाइए, पेपर वर्क को कम कीजिए और डिजिटल वर्क पर ध्यान दीजिए। यही इसी संदेश के साथ अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, कागज़ बचाएं, पर्यावरण बचाएं। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी आपसे संबंधित, हमसे संबंधित। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम के लिए आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी, आपका अपना रेडियो स्टेशन। स्टे ट्यून्ड।

रचनाएं ऊपर से सुंदर दिख सकती हैं, पर उनमें वो आत्मा नहीं होती जो इंसानी अनुभवों से आती है। कलाकारों, लेखकों और विचारकों की सोच किसी तय ढांचे में बंधी नहीं होती। स्थापित नियमों व पैटर्न से अलग जाकर नया रास्ता बनाते हैं। दूसरी ओर एआई पहले से मौजूद पैटर्न व डेटा को सीख कर काम करता है, जबकि मानवीय रचनात्मकता अक्सर उन्हीं पैटर्न को तोड़कर कुछ अनोखा और नया रचती है। जब कंप्यूटर आया तब कई लोगों ने पेन से कागज पर लिखना छोड़ दिया। अब एआई की मदद से बोलकर टाइप किया जा सकता है, जो टाइप करने की आदत भी कम कर रहा है। जब हम लिखते हैं तो केवल वाक्य नहीं बनाते दोस्तों, बल्कि अपने दिमाग को व्यवस्थित करना सीखते हैं। हम किस विषय पर गहराई से सोचते हैं, उसे समझते हैं और फिर अपने विचारों को सही शब्दों में ढालते हैं। जब हम लिखते हैं तो अपने विचारों को पूरे तरीके से अपने दिमाग में पढ़ते हैं। एक अधूरा विचार अधूरा वाक्य बन जाता है और लिखते समय हम अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगते हैं, गलतियां सुधारते हैं और यही प्रक्रिया हमारी सोच को और स्पष्ट बना दी है दोस्तों। बिल्कुल, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एआई का उपयोग करना गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना दिमागी विकास को रोक सकता है दोस्तों। इसलिए कुछ मामलों में एआई के उपयोग में थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। सोचने की आदत बनाए रखें। एआई का उपयोग करने से पहले हम खुद सोचें, अपने विचार बनाएं और फिर एआई की मदद से उन्हें बेहतर हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिक्शन जो है ये हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ सकता है, क्योंकि एडिक्शन हमें बहुत ज़्यादा एक ऐसी मुकाम पर ला सकती है जहां हमारी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए किसी विषय पर सीधे लेख लिखिए कहने के बजाय ये कहना अधिक बेहतर है कि ये मेरी रूपरेखा है, इसमें कमियां बताई जाएं और इसे बेहतर बनाने के सुझाव दिए जाएं। हम ऐसा प्रॉम्प्ट एआई को दे सकते हैं। इस तरह एआई हमारी सोच को कमज़ोर नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट और गहरा बनाने में मदद करेगा। चलिए बहरहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8।

बिल्कुल दोस्तों, आज मैं ऊपर आसमाने जे यही हाल है हमारे एआई का भी। एआई इतना ऊपर हो चुका है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो नीचे की ओर धंसती चली जा रही है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने लेख खुद लिखिए और फिर एआई को इसे और बेहतर बनाने के लिए कहिए, इसमें कमियां बताने के लिए कहिए, इसे और बेहतर बनाने के सुझाव दीजिए और हमारी सोच को ये फिर और अधिक स्पष्ट करेगा और गहरा बनाने में मदद करेगा। हमें कुछ ऐसी आदतें भी विकसित करनी होंगी दोस्तों जो हमारी सोचने की क्षमता को मजबूत रखें। हर कठिन विषय का तुरंत आसान सार मत खोजिए, थोड़ी देर खुद समझने की कोशिश कीजिए। हर छोटे निर्णय के लिए एआई से सलाह लेना बंद कीजिए। जब किसी विचार से असहमत हों तो तुरंत मशीन से उत्तर मांगने के बजाय खुद थोड़ा सा विपरीत दृष्टिकोण जरूर रखें और फिर विचार करें इस बात पर। इससे दिमाग जो है वो हमारा सक्रिय रहेगा, लचीला बना रहेगा। लेखन हो, चित्रकला हो या हस्तकला, इन सभी गतिविधियों में मानव रचनात्मकता को जीवंत बनाए रखने की विधाएं हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये कहीं खोती हुई नज़र आ रही हैं। जब हम एआई के सामने कोई तर्क देते हैं तो अक्सर वो हमारी बातों को सहमति से मान लेता है। कई शोधों में पाया गया है लोग उन उत्तरों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें सही महसूस करवाते हों, भले ही वो पूरी तरह सही ना हो। धीरे धीरे हम अपने विचारों को चुनौती देने के बजाय केवल पुष्टि खोजने लगते हैं। जब हर उत्तर हमें केवल संतुष्ट करने लगे तब हमारी निर्णय क्षमता कमज़ोर होने लगती है दोस्तों। हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं एआई हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से, क्योंकि एआई इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि वो हमारे दिमाग को रीड कर सकता है, हमारे माइंड को रीड कर सकता है और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही निष्कर्ष निकाल के हमें देता है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को सक्रिय रखें, उसके हर पहलू के बारे में सोचें। सीखने की असली खुशी केवल सही उत्तर पाने में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा में होती है जिसे हम गलतियाँ करते हैं, असफल होते हैं और फिर प्रयास करते हैं और अंत में जीत हमारी होती है, क्योंकि प्रयास कभी ना कभी सफल जरूर होते हैं।

प्रोग्राम 200 आप सुन रहे हैं बादे आपकी गीत हमारे, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एआई जो हमारे दिमाग पर, हमारे दिमागी कसरत पर भारी पड़ता जा रहा है। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को एक असाइनमेंट दी। अगले दिन चर्चा के दौरान उन्होंने देखा कि लगभग सभी छात्रों के तर्क, उदाहरण और बाकी एक जैसे थे। साफ था कि अधिकांश ने एआई का उपयोग किया था, लेकिन प्रोफेसर की चिंता केवल एआई के इस्तेमाल की नहीं थी दोस्तों। उन्हें चिंता थी कि जब इंसान अपने विचार और निर्णय मशीनों पर छोड़ देता है तो उसकी अपनी उपयोगिता कम होने लगती है, और बच्चों के मामलों में तो ये और भी चिंताजनक हो जाता है दोस्तों। यदि एक बच्चा शुरू से ही एआई पर निर्भर हो जाएगा तो उसके भीतर स्वतंत्र सोच विकसित ही नहीं हो पाएगी, और ऐसे बच्चे सवाल पूछने, तर्क करने या सही गलत में अंतर समझने की क्षमता शायद हासिल ना कर पाए। तब से वे जीवन से जुड़ी कठिन परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल एआई पर निर्भर रहना बहुत ही ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं दोस्तों, बाद है आपकी गीत हमारे, और आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की और किस तरीके से हमारी बुद्धि पर भारी पड़ता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धि का सहारा लेना कोई गलत नहीं, लेकिन दिमागी कसरतों का क्या? अगर वो भी मशीन ही करेंगी तो हमारा विकास कैसे होगा? जी दोस्तों, संघर्ष ही व्यक्तित्व को गढ़ता है। जापान में चावल व मछली से बनने वाले व्यंजन सुशी को तैयार करने वाले शेफ पहले 2 वर्ष तक सिर्फ चावल पकाना सीखते हैं और इस दौरान उन्हें मछली को छूने तक की अनुमति नहीं होती। इसका उद्देश्य सुशी बनाने की कला के साथ धैर्य, अनुशासन, ध्यान व बारीकी से काम करने की आदत विकसित करना है, और ऐसा ही है हमारे साथ भी कि हम AI का इस्तेमाल जो है ये एक साधन के रूप में ले रहे हैं इसको, या बिल्कुल हम पूरी तरह से इस पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि AI हमारे कामकाज को आसान और तेज़ ज़रूर बनाता है। हम भाषा का अनुवाद कर सकते हैं, डॉक्टर्स की सहायता ले सकते हैं, खेती मौसम और तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, काम की सटीकता को बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई में जानकारी ढूंढ सकते हैं। लेकिन AI का उपयोग समझदारी और सहायता के रूप में किया जाना चाहिए तो ही ये लाभदायक है, नहीं तो सोचने की क्षमता को ये बिल्कुल कम कर देगा। हमारी अपनी सोच और रचनात्मकता कम हो सकती है यदि हम अपने सारे काम AI से करवाएंगे। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो AI में नहीं हैं। इंसानों जैसी संवेदनाएं और अनुभव AI मशीन में नहीं हैं, और AI कभी कभी गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है। इसलिए जब भी आप जानकारी लें तो उससे भी सतर्क रहें। हर छोटा काम AI से करने पर मेहनत और सीखने की आदत को बढ़ाइए। हर छोटा काम AI से करने के बजाय सीखने की आदत को अपनाइए।

तो बिल्कुल दोस्तों, AI जो है वो हमारी मेहनत को घटाता है, सीखने की आदत को कम करता है, और मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है दोस्तों। कसरत सिखाने वाले निर्देश देते हैं कि पहले किसी व्यायाम को कम संख्या में करें, फिर उसकी संख्या बढ़ाते जाएं, और बाद में गति भी। आसान से शुरू करते हुए कठिन लक्ष्य बनाएं, हमारी मनोस्थिति के लिए नहीं, मांसपेशियों तथा शरीर के लचीलेपन के लिए, दिमाग के लचीलेपन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल AI को एक उपयोगी साधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसका मालिक बनिए। मानव बुद्धि, अनुभव और भावनाओं का स्थान कोई भी मशीन नहीं ले सकती दोस्तों।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आपकी गीत हमारे, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं AI की और हमारी खुद की क्रिएटिविटी की। तो बिल्कुल तकनीक का सही उपयोग ही प्रगति है, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भरता कमजोरी बन सकती है। तो खुद पर विश्वास रखिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आत्मविश्वास आपको संदेह से लड़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है। दोस्तों रोज अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दें, खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी प्रगति को सराहें, ना कि पूरी तरीके से AI पर निर्भर रहें।

तो दोस्तों, AI से काम आसान होता है, ज्ञान नया हर दिन मिलता है, पर खुद की सोच न खो देना, मेहनत करना भूल न जाना। मशीनें केवल साधन हैं, मानव सबसे बेहतर है। AI का उपयोग सही करो, खुद पर इतना विश्वास रखो। इसी नोट के साथ अपनी रेडियो दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम बातें आपके गीत हमारे यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आपकी, गीत हमारे, हम आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 77% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
2: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरऊ ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरेन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच, धर्मा व परलोक पंचायतों का बीडीसी सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
1: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिसमें 1187 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अटल टनल से होते हुए लाहौल घाटी भी भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। रोहतांग में बर्फ का आनंद लेने के अलावा पर्यटक विभिन्न साहसिक पर्यटन गतिविधियों सहित ग्रामीण इलाकों के अनछुए पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अजीज़ की आवाज़ में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज़ ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज़ में दाग के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ, इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सारी भैनों का कार्यक्रम च ही बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। अज का यह कार्यक्रम लई करने स्टूडियो च हाजिर है तुंदी रेडियो दोस्त प्रीति। भई हर सोमवार बुधवार कने शुक्रवार विशेष तौर पर इस समय अह अपनी सखियां वास्ते कार्यक्रम लई करने आते हैं कने विभिन्न विषयों उपर तिना ने जानकारी सांझा करते सौगी सौगी उन्हों का मनोरंजन भी करते हैं। तो अज भी सखियों जानकारी दे पिटारे च बड़ा कुछ अह लई करने आया है। तो अज अह गल करनी है नौ तपे दे बारे च। जी हाँ, नौ तपा क्या कने इस दौरान किना किना गल्लां दा ख्याल रखना जे ऐसे बड़ा जरूरी आ। दिखा नौ तपे की अवधि जे से शुरू हो चुकी कने अवधि 25 मई ते 2 जून तक। कने हिंदू पंचांग दे अनुसार वर्ष दे नौ सबसे गर्म दिनों का ये प्रतिनिधित्व करती है जालू सूर्य रोहिणी नक्षत्र च प्रवेश करता, जो कि परंपरागत इस बात का अंजो संकेत देता है कि जितनी तीव्र गर्मी होनी उतनी मानसून जे इसे मजबूत होनी है, उतनी मानसून उतनी बारिश जे इसे होनी है। कने एड़ा मन्या जांदा है पे तीव्र गर्मी जे इसे पृथ्वी गर्म कर दी जिससे कि निमन दबाव बनता है जो कि मानसून कने बारिश जो आमंत्रित कर दिए। तो इस दौरान बड़ी सारी एड़ी गलबात है जिन्हों का अंजो खासा ख्याल रखना है, उस बारे चाहे अपनी भैनों ने गल करनी है। तो भई दिखा इस दौरान तुह क्या करी सकते हैं कि जरूरतमंदा वास्ते ठंडे पानी सत्तू या छाछ छाता दान करी सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है सारे जाना दे तो जो कि पक्षी है आवारा जानवर है तिना वास्ते ताज़ा पानी कने अनाज या से उपलब्ध करवाना है। कने किना किना चीज़ों से बचना है पे दिखा दोपहर 12 बजे ते लेने शाम 4 बजे तक जे असें गैर जरूरी बाहरी यात्रा से बचना है। अगर तुह जाना ही पौदा है तो अपना छाता लेने सूती कपड़े पहने ने जे से जाना है। इस दौरान जे आ भारी मसालेदार भोजन ते परहेज़ करना है क्योंकि इस दौरान सूर्य देव पृथ्वी दे सबसे नज़दीक होंदे कने अप जिसते तापमान जे आ से अपने चरम पर पहुँच आंदा है। ज्योतिषीय गणना अनुसार भी सूर्य जे आ से रोहिणी नक्षत्र च प्रवेश करता है कर नौ तपे की शुरुआत होंदी है। इन शुरुआती 9 दिन जे से सबसे ज़्यादा गर्म होंगे पर यह नक्षत्र जे 15 दिनों तक जे से चली जाता है। इस दौरान सूर्य का प्रभाव सबसे खतरनाक मनिया जाता इसी वास्ते जो नौ तपा कहें कि 9 दिन जे से सूर्य बहुत ज़्यादा तपदा है। तो दिखा हर घटना पिछे एक कारण आ जिन्हें गल की कि जितना ज़्यादा तपगा उतनी जल्दी मानसून आनी कने उतनी ज़्यादा बारिश जी होनी है। पर बड़ी सारी चीज़ें जिन्हों का अंजो इस दौरान ध्यान रखना है तिन्हें है गल की कि पशु पक्षी चिंता करनी, जो पक्षी है तिना वास्ते साफ पानी दाना रखना है कने खुद भी ठंडी चीज़ों का सेवन करना है, अपने शरीर च पानी की कमी नहीं होनी देनी, अपने जो खान पान आ उस भी जो मौसमी फल है तरबूज खरबूजा खीरा होगा ककड़ी होगी इन्हों का इस्तेमाल करना है। पानी च तुहां दिखा लस्सी सिंपल पानी नींबू पानी पी करने खुद तो जैसे हाइड्रेट रखी सकते हैं कने अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि स्कूलों जा रहे हैं तिना का भी इस मौसम च खासा ख्याल रखना, जो बुजुर्ग है तिना का भी इस मौसम च खासा ख्याल रखने की जरूरत होंगी है। कने सौगी सौगी जे गल कर रहे हैं भी इस मौसम च 12 बजे तो लेने शाम 4 बजे के बीच तेज़ धुप्प जाने तो बचना है, लेकिन अगर जाना पौधा है तो छाता लई करने कने सूती कपड़े पहनी करने जैसे निकलना है। कने अगर परंपरा की गल करिए तो इस दौरान जो दान पुण्य का भी बड़ा महत्व मानया जाता है। नौ तपा च तुहे सत्तू घड़ा पंखा छत्ता जैसे छाता जैसे दान करी सकते हैं। इस अगर पौराणिक मान्यता अनुसार दान पुण्य का जो से बहुत महत्व आ। इन 9 दिनों के दौरान जो अधिक जो तला भुना मौसम भोजन आ इस बचना चाहिए क्योंकि इस मौसम च जो आंदा पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर होंदा कने अह कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो गर्म तासीर वाले चीज़ों से बचना है जो कि तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ाई है। अच्छे फल खाने हैं जो भी तुम्हारे शरीर वास्ते अच्छे, खूब सारा पानी पीना है कने इन नौ तपें अपना खासा ख्याल रखना है। कने दिखा कार्यक्रम च होर भी यह बड़ी सारी गलबात अपने भैनों ने करनी है पर जानकारियां सौगी सौगी मनोरंजन भी जरूरी है। तो कार्यक्रम सुनदे आने प्यारा जिहा लोकगीत, बाकी की जानकारी फिर इस लोकगीत के बाद।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वक्त तो सुना ध्यान कार्यक्रम महिला जगत कने। अज दे इस कार्यक्रम चाहे अपनी सखियां ने गल करा ध्यान कि जो 9 तपे शुरू होए, 9 दिन जो सूरज तपदा है, जो कि 25 मई ते लेने 2 जून तक दा समय रहना है, तां इस अवधि दे दौरान किना गल्लां दा खासा ख्याल रखना है। पहले तो गल कीती कि 9 तपा है क्या कने, इस दा फायदा क्या कने, नुकसान क्या है। तो वही दिखा फायदा तो यह गल की कि सूरज जितना तपगा मानसून उतनी जल्दी आनी है, कि उतनी ज़्यादा बारिश होनी, कि सौगी सौगी इस मौसम च देखभाल की जरूरत ही अपने भी कन जो आस पास आंदी प्रकृति च पशु पक्षी है तिना का खासा ख्याल रखना है। तो हूँ गल करते हैं कि इस मौसम च दिखा अपनी त्वचा का खासा ख्याल रखने की जरूरत होंगी, सौगी सौगी तुम्हारा खान पान कितना सही आ, इसका भी तुम्हारे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव जहा से पाँदा आ। तो गर्मियों त्वचा जो स्वस्थ रखने वास्ते, फ्रैश रखने वास्ते अधिक तो अधिक पानी पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पाँदा आ। कहीं इस मौसम से टैनिंग होंगी, धूल मिट्टी से बचना आ, अपना चेहरा जैसे दो बार जरूर धोना आ, त्वचा जो हल्का हाइड्रेट रखना है। जिन्हें भी तुम घर से बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन का उपयोग जैसे करना अपने चेहरे पर लगानी है। हाइड्रेशन संतुलित डाइट जैसे बड़ी ज़्यादा जरूरी, दिन चल कम ते कम दिखा 8-10 गिलास जैसे जरूर पानी पीना है। कने अपनी डाइट च मौसमी फल जे से शामिल करने हैं ताकि तुम्हारे शरीर कन त्वचा जे से हाइड्रेट रहो, उच्च रूखापन नहीं आओ। कन सौगी सौगी जहाँ दिखा पॉलिस्टर की बजाय हल्के ढीले सांस लेने योग्य जो सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े वो पहनने हैं ताकि तुम्हारे शरीर पर कोई रैशेज नहीं पौन, क्योंकि इस मौसम से त्वचा संबंधी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो उन्होंने ये भी है कि तो ये किस तरह के कपड़े पहना दे वो भी बड़ा ज़्यादा एक अपना अहम भूमिका निभाता है। तो हल्के सूती कपड़े जो पहनने हैं, कने जालू भी धुप्प निकला है तो छाता लेने निकलना है। इस मौसम च अधिक मेकअप करने से बचना है, क्योंकि अगर तुह बड़ा ज़्यादा चीज़ा अपने चेहरे पर लगाते हैं तो रोम छिद्र जैसे बंद हो जाते हैं। तो सही जो कॉस्मैटिक उत्पाद है तिना का चुनाव करना है। कने घरे रही ने भी तुहे अपने जो टैनिंग इस मौसम च हो जाती है, कालापन आई आता है, तो घरेलू उपाय जैसे करी सकते हैं, नींबू लगा सकते, कच्चा दूध लगा सकते हैं। सही खान पान दिखा पैनो बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे, क्योंकि अगर तुम सही अपना खान पान रखो है तो शरीर का तापमान नियंत्रित रहा है, तू हाइड्रेट रेंद्ते हैं, कन तुम जो लू जे इसका खतरा भी घट रहा है। पाचन क्रिया सही तो दिखा शरीर जैसे सही तरीके ने काम करता, तो ये सारी चीज़ा इस चीज़ पर निर्भर कर दियाँ कि तुम्हारा खान पान क्या, किस तरह की डाइट, किस तरह का आहार जहाँ तुम्हारा परिवार जैसे खाद आ। कहीं गर्मी के मौसम च आहार का खासा ख्याल रखना जैसे बड़ा ज़्यादा जरूरी होंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम आते शरीर से तेजी से पानी जैसे इलैक्ट्रोलाइट्स जैसे पसीने रूप जैसे अह खोई जाते हैं, कहीं जो थकान कमजोरी महसूस होंगी। तो सही खान पान खाना है, क्योंकि आए दिन यह दिखा दें कि बड़े सारे लोग जैसे बीमार होते हैं, तो इस भूमिका है कि मसालेदार बाहर का भोजन खाने से बचना है। कने अपने घर पर जहाँ प्राकृतिक पेय पदार्थ पीने, बाहर के पेय पदार्थों जो पीने से बचना है, अपने घर नींबू पानी हो गया, छाछ लस्सी हो गया, बेल शरबत हो गया, ये सारी चीज़ा जो शरीर जो तुरंत ऊर्जा पहुँचादी है, कहीं इससे आते शरीर जो ठंडक मिलती है। गर्मी मौसम से तुम दिखा रोजाना दही खाई सकते हैं, जो कि तुम्हें पाचन तंत्र जो सही रखता, कहीं पेट जो ठंडक मिलती है। भारी तेल वाले भोजन खाने से बचना है, अच्छी हल्का भोजन जैसे खुद भी अपने बच्चे जो भी खिलाना है। कई बार बच्चे मनते नहीं है तो उन्हें जो तले कन भुने जंक फूड से बचाना है। इसके अलावा जे तो ये घर पर अच्छे चीज़ा जैसे पकाई सकते हैं, तिना खिलाई सकते हैं, घर पर पेय पदार्थ बनाओ, अच्छा पेय पदार्थ हो, यानी कि बाहर दी चीज़ा कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ अलग जैसे चीज़ा वो खान, उस जंक फूड से बचना है। कैफीन अगर चाय का तुम सेवन कर दें तो उससे भी शरीर च पानी की कमी होती है, तो बिल्कुल घटते घट करना है, या फिर इस मौसम च नहीं करना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियों के मौसम च अगर खुद जो स्वस्थ रखना है तो सारे से पहले जरूरी है सही खान पान। तो सही खान पान जैसे तुह अपनाना, ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆ ਸੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਕਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌ ਤਪੇ 'ਚ ਜੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹਰ ਘਰ ਜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਰਸੋਈ ਇੱਕ ਸਭ ਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ। ਕਨੇ ਗਰਮੀ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਕੋਣਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਣੇ ਤੋਂ ਲਈ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਢੂੰਡਣੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਭਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 20 ਵਾਰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਧੂਪ ਹੋਦੀ ਕਿ ਬੜ੍ਹਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਹਿ ਇਸ ਫਰਿੱਜ ਪਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਪਰ ਅਧਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ 3 ਜਾਂ 4 ਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜੋ 3 ਜਾਂ 4 ਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖੋ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਤਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੀ ਭਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤਿਆ ਫਰਿੱਜ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 'ਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੱਬੜ ਸੀਲ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬੜ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਚਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ। ਫਰਿੱਜ ਜੋ ਧੂਪ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਡੀਫਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਈਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਾ ਡੀਫਰਾਸਟਿੰਗ ਜੇ ਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਸੂਪ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇ ਢੱਕੀ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣੇ 'ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਬਦਬੂ ਜੇ ਸੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਪਣਾਈ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਸਕਦੇ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तपाईं एक बार फिर अपनी सारियां भैणां दा स्वागत करदे हन कार्यक्रम महिला जगत। तां बिल्कुल कार्यक्रम दे आखरी पड़ाव चाहे पहुंच चुके हन, कने अज दे इस कार्यक्रम च गल करा दे हन कि इस नौ तपे च कितना अपना खासा ख्याल रखना आ, कने फ्रिज कितने समय तक तुहां खाण पान दी वस्तुआं जिसे रखी सकते हन, कने सौगी सौगी हुण गल करदे हन कि दिखा घरा दी रौनक हुंदे घरा दे बच्चे कने बजुर्ग। तां इस मौसम च गर्मी कने हीट वेव च जैसे घरा दे बच्चे कने बजुर्गों का खासा ख्याल जैसे रखना पौंदा, क्योंकि बच्चे कने बजुर्ग जो होंदे तिन्हां प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी घट होंदी, तां तिन्हां च लू लगने का डिहाइड्रेट होने का खतरा जैसे ज़्यादा रहिंदा। तो इस वास्ते जरूरी है कि दिन भर उन्हां जो सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या कुछ पानी कमी लगा दी तो ORS तो ही देंदे रहन। कने अगर धुप्प च नहीं निकलन तो ज़्यादा अच्छा, पर अगर फिर भी निकलना पौदा है तो हल्के सूती कपड़े पहने ने, टोपी पहने ने, छाता लेने जैसे निकलन, क्योंकि परिवार के सबसे संवेदनशील सदस्य होंगे कि इन्हों का खासा ख्याल जैसे रखने पौदा आ। बच्चे होइए, बुजुर्ग होइए, बिल्कुल इन्हें प्यास लगने इंतजार नहीं करना, बल्कि इन्हों हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी जैसे पिलाते रहना है। इस तरह की आदत अपनानी है। इलैक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं कि शरीर च जैसे पानी के नमक का स्तर जैसे बनी रहो। कई दिखाते घर के बुजुर्ग होंगे तिन्हों बार बार चाय कॉफ़ी पीने की बड़ी आदत होंगी, तो इस मौसम च तिन्हों थोड़ा समझाना है अगर पी दें तो थोड़ा कमी जी से उस करनी है कि थोड़ी जी चाय या कॉफ़ी जी से पीनी है। हमेशा घर के बजुर्गों जो बच्चे जो ताज़ा कने हल्का भोजन देना आ, पैक्ड फूड देने से बचना आ, क्योंकि इस मौसम च पेट से संबंधित बीमारियां जल्दी आनिया। भरपूर फल की डाइट देनी है, हमेशा हल्के सूती कपड़े पहनाने हैं, कने घर का तापमान जैसे सामान्य रखना। अगर AC कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम बड़े ठंडे वातावरण से एकदम बड़े गर्म च नहीं चली आना, क्योंकि कई बार बच्चे मनते नहीं है, एकदम घर के अंदर तो जाते हैं, बाहर धुप्पा खेलना शुरू कर देते, जिससे भी गर्म सर्द होता है, बच्चे बीमार होते हैं। तो एक खासा ख्याल जो आदि सखियाँ जो ही रखने पौंदा आ, क्योंकि नौ तपा की भीषण गर्मी जी ना ये बच्चे कने बजुर्गों जो लू कने डिहाइड्रेशन का खतरा इस ज़्यादा होंगे आ। तो इस दौरान जहाँ थोड़ा जहा खासा ख्याल जैसे रखना, कने सावधानी बरतनी है, कने शरीर जो हाइड्रेट रखना है, क्योंकि इस दौरान शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, हीट स्ट्रोक का खतरा बड़ी आता है। तो इस मौसम च दिखा बच्चे होइए, बुजुर्ग होइए, जो गर्भवती महिलाएं या फिर हार्ट कंड डायबिटीज़ के मरीज है, उन्होंने जो भी इस मौसम च जल्दी बीमार हो ही आते हैं, शरीर का तापमान ज़्यादा बढ़ने से चक्कर, उल्टी, बुखार या कोई कमजोरी महसूस हो सकती, तो इस मौसम च सही खान पान, अपनी दिनचर्या का खासा ख्याल रखना आ। कने बच्चे की भी इम्यूनिटी इस मौसम च तिन्हें दस्से कि जो बुजुर्ग है थोड़ी कमजोर होंगी है, तो तिन्हों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने देना आ, कने अच्छे छायादार जगह ही उन्हें जो खेलने वास्ते प्रेरित करना आ, क्योंकि बच्चे मनते नहीं है। तो यह है कि इन सारिया गलों का ध्यान रखी करने जे आ अपने इस गर्मी के मौसम का आनंद जैसे उठाई सकते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर की ठीक 12:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर प्रीति लेकर आई हूं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं रंग दे बसंती फिल्म के इस गीत के साथ। आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। इस गीत को गाया है दलेर मेहंदी और चित्रा ने।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं वाजिगर फिल्म से, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चलते चलते से, और इस गीत को गाया है बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित ने।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। श्रोताओं, ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी की रेडियो सेट्स पर। इसे हमने लिया है फिल्म द फैमिली स्टार से और इस गीत को गाया है हरजोत कौर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं, अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियाँ नदियाँ जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देखते हैं, देख सकते हैं, जहाँ ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता

बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है, इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे कौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न हैं आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और उसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है। और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी, फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे। और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल। और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है। आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनिया में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो

करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था। तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहली कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द, एक प्यार भरी सी मुस्कान दे दो। किसी को और अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह ना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ, इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है पिताजी ने। कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत

अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून? बताइएगा, कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था? ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया, उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए ही सही।

0: हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा, और उसका कोई अर्थ भी होता है। ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे? उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं। तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था। तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में। और जब विकट स्थिति इस विश्व की आई थी, उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी, और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो, सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथाश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं हैं, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाएं तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दिए हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठ सबके कंधे

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी

जानकारी दे दी, और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफ़र का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है, और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है, और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुँह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए, और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं। बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, विधि प्रवीण जैन को नमस्कार।

0: two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
5: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडिया को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-Indian rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
4: मेरे वतन।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार में।

0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज में, राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप

0: प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ आबोहवा और पानी का उपहार दिया है और इन संसाधनों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी है, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने बना दिया।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि लोगों को अपने आचरण में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आम जन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संग्रह पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। इससे पूर्व बीते रोज हुए पहले चरण के चुनाव में 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते राज्य में वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी शिमला के आसपास वनों में आग की लगभग आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं, जबकि सोलन जिला में भी कई स्थानों पर जंगलों में आग लगी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौली के साथ लगते मनोन गांव, गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल क्षेत्र में जंगलों में लगी आग को सेना, वायुसेना और कसौली व चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से काबू कर लिया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चंडीगढ़ के सुखना लेक से लाए गए पानी से इस आग को काबू किया। इस दौरान पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और भीषण गर्मी से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से

0: बेचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है ग्रामीण भारत में जल शासन। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
0: जल पर्यावरणीय संवहनीयता और मानव कल्याण का एक मौलिक आधार है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रखने के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल आयोग के अंतरिक्ष आदानों के उपयोग से भारत में पानी की उपलब्धता का पुनर्आकलन 2019 शीर्षक अध्ययन के अनुसार देश में औसतन सालाना लगभग 3,880 अरब घन मीटर वर्षा होती है। अगर वाष्पण और अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान को निकाल दें तो देश में औसत सालाना जल उपलब्धता लगभग 2000 अरब घन मीटर रहने का अनुमान है। देश में जल की औसत सालाना उपलब्धता काफी हद तक जल मौसम वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आबादी के आकार से भी निर्धारित होती है। आबादी में लगातार वृद्धि के साथ ही पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 17.5% जनसंख्या और 11.6% मवेशी संख्या भारत में है। इससे देश जल संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80-90% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। सीमित जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप भूजल के स्तर में गिरावट आ रही है। इससे जल की मौसमी तंगी होने के साथ ही पानी के आवंटन को लेकर टकराव भी बढ़ रहे हैं। ये चुनौतियां आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण के बजाय मांग आधारित और योजनाबद्ध जल प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। इस संदर्भ में जल बजटिंग पानी की कमी वाले उन क्षेत्रों में संवहनीय विकास के महत्वपूर्ण साधन के तौर पर उभरी है, जहां तंगी और असमान वितरण से आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलता को खतरा है। जल बजटिंग का मतलब नवीकरणीय उपलब्धता के साथ पानी के इस्तेमाल को संतुलित करने के मकसद से गांव, जल क्षेत्र, प्रखंड और जिला जैसी किसी परिभाषित भौगोलिक इकाई में जल की सुलभता और मांग का व्यवस्थित ढंग से आकलन है। जल बजटिंग के मूल में वाष्पण, बहाव और भूजल, भूमि पर प्रवाह, भूजल संचय समेत जल के सभी आदानों का आकलन है। बुनियादी गणना से आगे एक विस्तृत जल बजट प्राकृतिक परिवेश के अंदर जल के प्रवाह और वितरण को समझने में मदद करता है। इसमें सतही जल और भूजल प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया, वर्षा और रिचार्ज में मौसमी परिवर्तन तथा कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक उपयोग जैसी मानव गतिविधियां का प्रभाव शामिल है। जल बजटिंग को विभिन्न पैमानों पर व्यक्तिगत खेतों और गांवों से लेकर समूचे जल क्षेत्र और नदी घाटी तक लागू किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्थितियों, संसाधनों की उपलब्धता और मांग की प्रकृति के आधार पर किसी खास स्थान के लिए जल प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना संभव होता है। इस तरह का योजना निर्माण खासतौर से भूजल की कमी, मौसमी तंगी, बाढ़ या जलवायु से संबंधित अनिश्चितताओं का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है। शासन के दृष्टिकोण से देखें तो जल बजटिंग सूचनाओं और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय लेने में मददगार है। ये अधिकता और तंगी वाले क्षेत्रों की पहचान कर कृषि, घरेलू उपयोग, मवेशियों और उद्योगों के लिए जल के कुशल आवंटन को संभव बनाती है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग का अनुमान है कि उच्च मांग वाले परिदृश्य में वर्ष 2050 तक भारत में सिंचाई के लिए पानी की मांग 807 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त सहभागी जल बजटिंग पहलकदमियों के साक्ष्यों से पता चलता है कि पानी की उपलब्धता के अनुरूप चुनी गई फसलें जोखिम को कम करती हैं और उत्पादकता को बढ़ाती हैं। जल बजट एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें मवेशी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाता है। मानक मानदंडों का उपयोग करके मवेशियों की पानी की मांग का अनुमान लगाना और इसे समग्र जल मूल्यांकन में शामिल करना अधिक संतुलित आवंटन सुनिश्चित करता है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियाँ निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज़्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियाँ ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज़्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोज़मर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज़्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कम्फर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियाँ विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
1: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिज़ाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
0: जी। कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिज़ाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते हैं, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहें आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयाँ मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो

0: रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा
0: बिल्कुल
1: है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज़्यादा
0: बिल्कुल,
1: हो रहा
0: ये
1: है।
0: शोध में सामने आया है
1: जी
0: कि बुजुर्ग युवाओं से ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने की वजह से फ़ोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
1: जी
0: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती
1: बिल्कुल।
0: छाई
1: और
0: रहती
1: हम
0: है।
1: शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक
0: बिल्कुल
1: कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए थे।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फ़ोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीज़ों को।
1: हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे बैठे रहना, फ़ोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने
0: बिल्कुल,
1: लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं
0: बिल्कुल
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना
0: हाँ
1: उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गंवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे गेम
1: तो
0: बना रहे हैं ना वो लोग, कि
1: जी
0: जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है, वैसे ही
1: हाँ बिल्कुल
0: बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि
1: तो
0: उनको
1: ये
0: फायदा
1: और
0: हो।
1: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
0: जी
1: चीज़ें
0: हाँ
1: हो जाती हैं और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
0: बिल्कुल,
1: चीज़ों से
0: और
1: ना
0: सबसे बड़ी
1: फंसें।
0: बात है दीपा, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज़्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए ज़माने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतज़ार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सयाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
1: क्या बात
0: बढ़िया।
1: है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है। जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं, और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है, फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक
1: बिल्कुल
0: संतुलन
1: देखिए,
0: उन्हें ज़रूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पे खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस
0: बिल्कुल
1: कहने का ये मतलब है। और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है। सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है कि
0: बिल्कुल
1: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर। बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है। और दूसरी चीज़ें, चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ, उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब
0: कहा।
1: तक आपके
0: और
1: ऊपर
0: जो
1: बुरा नहीं
0: अकेले
1: पड़े।
0: रहते हैं घर में,
1: जी
0: सीनियर सिटीजन,
1: जी
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी बिल्कुल
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी
1: हाँ
0: जाती
1: हाँ
0: हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बस
1: नहीं,
0: अगर उसका
1: सही
0: किस तरह से
1: तरीके से।
0: संयमित
1: और ये सिर्फ
0: इस्तेमाल करना है
1: बुजुर्गों के
0: ये
1: लिए
0: हमें
1: नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं।
0: जी
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो, मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज़ है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए। आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं

0: बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुँचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियाँ वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने की
0: है।
1: इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पर बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली वी कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है। और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा

0: पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो ज़रूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और
1: जी,
0: सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो ज़रूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है और आपका कोई मिशन है, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे.
0: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
1: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड 19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
0: क्या बात है.
1: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
0: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
1: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
0: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
1: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं.

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड।

0: वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स
1: जी
0: व्हेन
1: जी
0: हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख, पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था, CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था।
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है। तो
1: लोगों में
0: उस
1: ये अवेयरनेस आई है
0: अवेयरनेस
1: कि
0: बहुत
1: ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो, और समझो 1 2 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहाँ पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं। तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन हैं कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है, तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख

0: सकते हैं ये?
1: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया @gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
0: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
1: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
0: वाह वाह।
1: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो ये बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज़ थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है,
0: जी
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, आपको
0: बिल्कुल
1: खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था. तो मुझे बोलती, नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली, तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्हों बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे, चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं, और उस पर कटौती भी करते हैं. क्योंकि मैं, एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है, फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी ना हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी ना हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद ख़तरनाक है।
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी ख़त्म हो जाता है, बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
0: जी।
1: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए
0: जी।
1: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
0: सेम दवा।
1: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है, क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंज

0: भी रहती है जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना.
0: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज़ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि कियोस में यूज़ करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: जी,
1: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवान।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। जी श्रोताओं, आज की शाम की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अब आपको हम जानकारी देते हैं आज शाम प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद ही आप सुनेंगे भजन संध्या। 5:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम यू मंच का, और शाम 6 आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक न्यूज। छः बजकर 5 का वक्त रहेगा सफर सुहाने गाने नए पुराने का, और 6:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। शाम 7 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे, और 7:05 का वक्त रहेगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का। 7:25 पर आप सुन पाएंगे रोणका ग्राएं दिया। सात बजकर 45 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और रात्रि 8 आप सुनेंगे विविध भारती। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, और 9:09 आप सुनेंगे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर विविध भारती सुनेंगे, और रात्रि 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। रात्रि 10:30 पर वक्त रहेगा कार्यक्रम चांदनी रातें का, और रात्रि 11 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज शाम रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या।

जी श्रोता, भक्ति में वृतांत जो है वो हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं को पवित्र शास्त्र और ईश्वर की निरंतर गतिविधियों से जोड़ता है।

जी श्रोताओं, भक्ति चाहे माता की करो, प्रार्थना चाहे बाबे से करो या शिव भोलेनाथ से करो या कृष्णा से करो, लेकिन भक्ति करने से एक बात तो सच्ची है, पक्की है श्रोताओं, कि भक्ति करने से परमात्मा आपके साथ होते हैं और आपकी पल पल रक्षा करते हैं। साथ में साधक को सर्व सुख भी इससे मिलता है। जो आत्मा का सुख है, जो आत्मा की शांति है, वो भक्ति करने के बाद ही मिलती है। और अभी आपने जो ये भजन सुना वो था सुरेश चौहान की आवाज़ में, और कार्यक्रम भजन संध्या में अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं कर्नल राणा की आवाज़ में।

जी श्रोताओं, और इस गीत के साथ ही, इस भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम युव मंच।

संगीता, और आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ और सुनने के लिए और आपको सुनाने के लिए गीत संगीत। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? और आशा करते हैं कि क्योंकि ये बात इसलिए लंबी सांस लेकर मैं कह रही हूँ क्योंकि आजकल जो गर्मी का मौसम है, जो इतनी हीट बढ़ गई है दिन के टाइम पर और शाम का भी नहीं पता चलता कि अब शाम हो चुकी है या दोपहर का टाइम है। तो आशा करते हैं कि इसमें सभी आप सकुशल होंगे, गर्मी से बचकर अपने घरों में अंदर रहते होंगे। लेकिन जब कभी भी बाहर जाना भी पड़े तो अपना सेफ्टी से निकलते होंगे आप लोग बाहर। तो दोस्तों, कार्यक्रम यू मंच में सबसे पहले बात करते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के बारे में। जी हाँ, आज का यह दिन 27 मई, तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। उनका निधन 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण चाचा नेहरू के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, वे स्वतंत्र भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक यानी लगभग 16 वर्ष तक का रहा। वे लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारत के औद्योगिकीकरण, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी।

दोस्तों, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो आज वर्तमान में प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक दिग्गज वकील और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 15 वर्ष की आयु में ही जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ उन्होंने हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई भी की। उसके बाद उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 1947 में वे से लेकर 1964 तक वे रहे। आधुनिक भारत का निर्माण करने में उनका काफी योगदान रहा। बात की जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो भाखड़ा नंगल बांध जैसे बड़े बांधों जिन्हें उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, उनके साथ साथ आईआईटी और परमाणु ऊर्जा जैसे संस्थानों की भी स्थापना की। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहित्यिक योगदान भी बहुत ज़्यादा दिया। वे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जिसमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, और इसके साथ साथ ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, और एन ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी कहानी और आत्मकथा जैसी साहित्यिक योगदान दिया उन्होंने। बच्चों के प्रति उनके असीम लगाव और प्यार के कारण उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे।

0: तो दोस्तों, हम भी जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जो है वो अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और राष्ट्र के प्रति समर्पण सीख सकते हैं। उनकी दूरदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बच्चों के प्रति उनका अगाध प्रेम आज की युवा पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए युवा साथियों, सीखने के लिए तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ सीख जाते हैं, छोड़ जाते हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें हमारे लिए रह जाती हैं। जैसे कि पंडित जी के जीवन से भी हम सीख सकते हैं निरंतर सीखते रहना। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रहते हुए लिखी थी और इससे हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञानार्जन जो है और पढ़ने की आदत जो है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप चाहे कहीं भी हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, सीखना तो आपको कहीं भी पड़ सकता है और कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी पढ़ने की आदत को नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो वे आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। युवाओं को अंधविश्वास से दूर रहकर हर बात को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जो है वो परखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संस्थाओं की जो जैसी संस्थाएं हैं उनकी नींव जो है वो मजबूत हो और हमारे युवा भी समाज में सभी के विचारों का सम्मान करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखें। इसके साथ साथ हमारे युवा साथी और हम सीख सकते हैं कि समय का सदुपयोग और सक्रियता वो कैसे करें। पंडित जी एक अत्यधिक व्यस्त राजनेता होने के बावजूद हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान रहते थे। दोस्तों, युवा उनके जीवन से अनुशासन और समय के बेहतरीन प्रबंधन सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और युवाओं को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने, साहसी बनने और देश के विकास में सकारात्मकता जो है वो योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो युवा साथियों, हम भी इनकी ये जो गुण हैं वो अपने जीवन में अपना कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, तो ले चलते हैं आपको गीत की ओर इस विज्ञापन के बाद।
1: अचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: यूं में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
3: और ये
2: मेरी गुड़िया के
4: नाम। पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यू मच, और कार्यक्रम में अभी आपने जो गीत सुना वो था विशाल डडलानी और शिल्पा राव की आवाज़ों में फिल्म अनजाना अनजाने से। तो चलिए अब कार्यक्रम में बात करते हैं हमारे युवा साथियों में कम उम्र में ही होने वाली बीमारियों के बारे में। देखिए आजकल हम कितनी बातें सुनते हैं, कितनी हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं कि कम उम्र के जो युवा हैं या बच्चे जो हैं वो काफ़ी बीमारियों के साथ जो है वो घिरे हुए हैं। जहाँ तक देखा जाता था कि उम्र बढ़ती है या जब आप अपनी उम्र से और आगे प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तब कुछ हम मान सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं तो हमें कुछ बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। लेकिन आजकल खेलते कूदते बच्चों में ही हमें काफ़ी बीमारियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन सब का जो मुख्य कारण है वो हमारी आधुनिक जीवन शैली, खराब खान पान और सबसे बड़ी बात कि शारीरिक गतिविधियों में कमी जो है और उसके साथ साथ बढ़ता तनाव, ये सभी मुख्य कारण हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अनहेल्दी आदतों का शिकार हो रहे हैं जो कि हमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। और कम उम्र में ही पनप रही बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मानसिक तनाव, तो ये सब जो बीमारियां हैं इन सब के जो कारण हैं वो इस तरह से ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान जो है वो ख़राब है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं जंक फूड की ओर या प्रोसेस्ड फूड की ओर, जिसमें कि उनमें सिर्फ तेल है और उसके साथ साथ चीनी, नमक, ये चीज़ें इतनी अत्यधिक मात्रा में होती हैं और उसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स जो मिले होते हैं वो हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और फैट को बढ़ाते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ जो है हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज जो हैं उनकी जगह हम प्रोसेस्ड फूड को दे देते हैं और उनके खाने से हमारे शरीर में ज़रूरी जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसके साथ साथ हम अपने शरीर को निष्क्रिय बना रहे हैं क्योंकि हमारी बैठने की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। चाहे हम जॉब करते हैं या अपना पढ़ाई करते हैं तो हमारा डेस्क जॉब जो है वो लगातार कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठने से शारीरिक गतिविधि जो है वो लगभग शून्य हो जाती है, जिससे कि मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा जो है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है। और इसके साथ साथ फिर बढ़ती हैं तनाव और मानसिक समस्याएं, हमारा करियर का दबाव या पढ़ाई और अत्यधिक जो प्रतिस्पर्धा है उसके कारण कम उम्र में ही हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी का हम शिकार हो जाते हैं। देर तक जागना, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है वो अच्छी नींद जो है वो ना लेना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है दोस्तों। और धूम्रपान और शराब यानी नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंगों जैसे फेफड़ों, लीवर, दिल, इन सब को जो है वो ख़राब कर देता है और उससे बढ़ती है हमारी कम उम्र। इन सब बातों के साथ साथ हमें चाहिए होता है उस वक्त भावनात्मक सहारा, और भावनात्मक सहारा हमें दे सकता है हमारा परिवार या उसके साथ साथ हमारी दैनिक क्रियाएं।

0: जी हाँ दोस्तों, तेज रफ्तार और अनिश्चितताओं से भरे आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता सामान्य अनुभव बन चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय परंपरा के रोजमर्रा के संस्कार जैसे अपने कामों को निपटाना, सुबह की प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति के बीच रहना, भोजन से पहले शांत होकर बैठना या दिन के अंत में कृतज्ञता व्यक्त करना, केवल ये सब बातें जो हैं वो अनुष्ठान ही नहीं बल्कि मन को संतुलित करने वाले सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अभ्यास होते हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे संस्कार व्यक्ति के जीवन में एक लय और क्रम स्थापित करते हैं। जब कोई क्रिया नियमित रूप से सजगता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ की जाती है तो वह मन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में व्यक्ति इन क्रियाओं के माध्यम से अपने लिए निश्चितता निर्मित करता है। ये दिमाग को आश्वस्त कर देती हैं जिससे कि तनाव और चिंता का स्तर कम होने लगता है और हमारा चित्त मन प्रसन्न रहता है। शोधों में पाया गया है दोस्तों कि छोटे छोटे काम तनाव, शोक और असुरक्षा की भावनाओं को कम करने में सहायक होते हैं और अध्ययन संकेत करते हैं कि किसी क्रिया की भव्यता या जटिलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उसकी नियमितता और उससे जुड़ा भावनात्मक संबंध होता है। तो जब कोई अभ्यास निरंतर सजगता के साथ दोहराया जाता है तो वह मन के लिए मनोवैज्ञानिक एंकर बन जाता है। तो मतलब कहने का यही है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में लाना होगा ठहराव अपनी दैनिक क्रियाएं करके, और छोटे छोटे ये जो सूक्ष्म हमारे अभ्यास हैं जिसमें हमारी दैनिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं उनको करके हम अपने तनाव को जो है वो दूर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में यू मंच में जो है वो वक्त हो चुका है एक और गीत का, आइए सुनते हैं एक और गीत।
1: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

जी युवा साथियों, और इन सब जानकारियों के साथ और इन सब बातों के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ संगीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी 2 चरण होने बाकी है और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
1: अधिकतर जो इसमें चुनावों में, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, 2 फेज अभी और इसके होने हैं अगले 2 दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है 4 नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायत, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जो भी प्रतिनिधि जीत कर आएगा, सरकार उसके साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैकलोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है, बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्व जनगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्व जनगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्व जनगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्व जनगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नवंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्व जनगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सफ़र और गाने, जी हाँ, गीत, इनका रिश्ता बहुत ही पुराना और ख़ास है। बात की जाए, जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो गाने उस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। चाहे वो युवा साथी हों, बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, किसी भी अवस्था के, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, तो जब सफ़र पर निकलते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ में पहले रेडियो हुआ करता था और अब मोबाइल। तो गीत जो हैं वो किसी भी रास्ते की लंबाई को छोटा कर देते हैं और कभी कभी मन के भावों को भी शब्द दे देते हैं।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: जी श्रोताओं, देखिए, जैसे हर रास्ता किसी मंजिल तक पहुंचता है और वैसे ही हर गीत दिल के किसी कोने को छू जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सफर सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और संगीत का भी होता है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने यहीं संपन्न करते हैं। संगीता को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: भाई राम राम।
1: ओ राम राम भाई, राम राम। और भाई ठीक है?
0: मैं ताई बिल्कुल ठीक। तुहां सुनाओ पे, तुहारे क्या हाल चाल है? कने पलियो एड़ी है गर्मी च कुत घूमियो तुहें?
1: ओ गर्मी तो दोपहर हरी हुई तीहा जो बोला है गर्मी
0: अच्छा
1: है। हूं तो थोड़ा जहा आराम पेया, थोड़ी छांव आएगी कने। नहीं तो भाई दोपहर आ, ओ हो मेरे परमात्मा, बड़ा बुरा हाल।
0: तो जग तू पाई, मेरी दोपहर तो आजकल 9 बजे हो जाती प्यागा ना,
1: अच्छा
0: कने संजरे 6 बजे तक दोपहर ही हुई।
1: तो हूँ देखो ना, परमात्मा जे आसे सवेरे 5 बजे ही एड़ा लगा जानता हूँ, 6 बजे होंदे होंदे 1 बजी गिरा भाई। चलो एड़ा ना रोशनी बहन जी, भाई असा जो हिमाचल की गल करिए ना, तो है बड़ा खुशकिस्मत लोग है। हाँ जो सारियां रितुआं दिखाने जो मिलाई हैं,
0: बिल्कुल।
1: चाहे भाई धुप्पे तपिरे ता, जे सर्दी है ता, बरसाती है ता, है
0: अपने थरी रीस तो कोई नहीं
1: कोई
0: ना,
1: नहीं है।
0: पर तिया जे मौसम बदला रहा, जलवायु च परिवर्तन आ रही है या उसकी वजह से हूं अहारे थी भी बड़ी भारी गर्मियां पौना शुरू हो गई है ना।
1: भाई देखो, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सोच का विषय है, क्योंकि असर अगर 15-20 साल पहले देखिए तो
0: हाँ
1: कितना मतलब स्थिर रूप ने था ना।
0: बिल्कुल
1: टाइम
0: बिल्कुल।
1: आ टाइम अरे गर्मी आनी, टाइम आ टाइम अरे बरसात आनी, टाइम आ टाइम अरे स्याल आना, है ना।
0: हाँ जी
1: लेकिन कुछ साल ते तो ये देखने जो मिला था भाई, अप्रैल तक भी एडा लगो जन तक गर्मी आए ही नहीं करती, कहने चली जे गर्मी आई तो हूं लगा था भी यार ये तो बड़ी ही
0: बड़ी
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है ना।
0: होगी।
1: तो कुछ ना कुछ जी ऐसे मतलब सीमा ते परे हुई ने जी, ऐसे चीजें हो रही है। पिछले तो 2-3 साल ते दिखे नहीं है भाई, जे बरसाती आई है तो इतना भारी आपदा लेने आई भाई, सारे जो जैसे बड़ा मुश्किल हुई है
0: ठीक गल गला दे तू है ना, कने यह गल जो पाई हम सारे जो सोचने चाहिए,
1: सारे जो।
0: सारे ते ज्यादा असर ता देखा खेती बाड़ी है प्रिय हुआ था कने।
1: बिल्कुल, खेती बाड़ी पर सहजे यहाँ फसल लगानी भेजी, यहाँ ये मौसम अरे सब रहे सह मौसम आया करता, या तो लेट या पहले ही आई
0: आई
1: आराम
0: जा
1: है,
0: दे
1: तो फिर ही बड़ी बड़ी मुश्किल हुआ दी। और गर्मियां च हरी जितनी भी सब्जियां होंगी है ना, तीसरा टाइम होंगे ताली जी, हाँ तीसरा रख रखाव करना, तीसरी देखभाल करनी अपना फसलारा काम है ना, तो ये सारिया चीजें जी ऐसे हाँ जो मौसम हिसाबा ने ही करना पाया।
0: आओ, पर दिखा और तो है सारा काम कर लेंदे पे सजे हारे करने रा, नराई कर ली, गुड़ाई कर ली, टाइम मारी दिखा पे फसल बाई दित्ती है, रीति नारी रख रखाव भी करा दे, टाइम मारी सिंचाई भी करा दे, पर ताली जे गर्मी रा प्रकोप हुंदा ही है।
1: हाँ
0: गर्मी रे मौसम च अहारिया तेना फसना जो ताली ज्यादा तापमान मिलता, कई बारी क्या हुंदा ये पे कोई कीट लगी आंदा, फफूंद जनित कई रोग लगी
1: कई
0: आंदे
1: रोग
0: है ना,
1: है
0: तेना
1: और
0: खतरा बड़ा बढ़ता था
1: बहुत
0: ना,
1: बहुत ज्यादा।
0: तो ए समय हुंदा ना ताली अहां जो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम के 7 बजने को हैं श्रोताओं, और अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

0: अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आपने महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म लोफर का ये भक्ति गीत सुना। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अब आपको अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, विज्ञापन से पहले आपको हमने सुनवाया मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म अमर का ये भक्ति गीत। कार्यक्रम भक्ति संगीत में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लम्हे का ये भक्ति गीत।

और लीजिए साथियों, अब प्रस्तुत है इस भक्ति गीत कार्यक्रम में अंतिम भक्ति गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, और फिल्म है गोपी।

जी श्रोता, और इस भक्ति गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम भक्ति गीत का यही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रोणकां ग्राएं दियां।

तभी श्रोताओं इता कार्यक्रम रौनक गलाए नहीं अच अहे सुनिया प्यारा जिहा लोकगीत कने अज दे इस कार्यक्रम च अहे गलबात करा दे हन प्रकृति दे बारे च जो कि आंदे गांव जो आंदे देश जो आंदे सारे पृथ्वी जो सुंदर बनांदी है कने प्रकृति ते केड़ी केड़ी गल्लां जी अस अहे सीखी सकदे हन इन सारी चीजां पर अहे इस कार्यक्रम च गलबात करा दे हन। प्रकृति ते अहे आर्थिक मूल्य सीखी सकदे हन, जीवन समर्थन दा मूल्य सीखी सकदे हन, मनोरंजक मूल्य सीखी सकदे हन, वैज्ञानिक मूल्य सीखी सकदे, सौंदर्य मूल्य सीखी सकदे हन, जीवन दा मूल्य सीखी सकदे हन, कने विविधता च एकता दा मूल्य, सहजता दा मूल्य, इस सारे मूल्य जे प्रकृति ने जुड़े कनीना सारे जो अहे प्रकृति ते सीखी सकते हैं। प्रकृति इतने सारे मूल्यां जो सिखा दी ता कुछ आंदा भी फर्ज बनदा या कि अपने गांव दी आस पास दी प्रकृति दा ख्याल रखन। कनी इस आस पास दी प्रकृति दा ख्याल रखना बेहद आसान है। अपने दैनिक जीवन चाहे छोटे छोटे कदम उठाई करने, हरियाली, जल स्रोत, वन्य जीवां दी रक्षा करी करने जे आ अपने गांव दी आसपास दी प्रकृति दा ख्याल रखी सकदे आं। पेड़ लगाना जो आसपास दी खाली जमीन ही तिस पर ही कई विभिन्न तरह दे प्रजातियां दे अच्छे आयुर्वेदिक गुणा वाले पौधे जो लगाई सकदे आं। समय समय पर उन्हां दी छटाई करदे रहना आ। पानी दी बचत करनी, सुरक्षा करनी, जो भी प्राकृतिक जल स्रोत है तिन्हां कचरे ते बचाना आ। खेती वास्ते बगीचे च अपने रसायनिक खाद दी जगह केंचुआ खाद या गोबर खाद दा इस्तेमाल करना है जिससे कि मिट्टी दी उपजाऊ क्षमता बनी रहो कने प्रकृति जो भी कोई नुकसान नहीं हो। सौर ऊर्जा दा बेहतर उपयोग जे असे करी सकते हैं एक बेहतर विकल्प आए। कने अपने आस पास दे जीव जंतु तिन्हां दा भी संरक्षण करना या जिन्हां हुण गर्मियां शुरू हो चुकी है या ता आस पास दे जो तुहे अपने जो पक्षी आंदे हैं तिन्हां वास्ते बर्तन च पानी रखी सकते हैं, दाना रखी सकते हैं, जो आवारा पशु है स्थानीय वन जीव है तिन्हां भी नुकसान नहीं पहुंचाना या प्राकृतिक खेती जो बढ़ावा देना है। रसायनिक कीटनाशकां दी जगह प्राकृतिक या जैविक खेती दी विधियां अपनानी हैं ताकि यह प्रकृति दा संरक्षण जैसे करी पान। ये तां गल कीती प्रकृति दे संरक्षण दी कने एड़ी क्या चीजां हैं जो प्रकृति च रही करने तुहां अपनी देखभाल वास्ते अपनाई सकदे हन। अपने तई दिखा समय निकालना बड़ा जरूरी है। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकदा है पर दिखा अगर अहे अपनी प्रकृति ने जुड़ गए तो इस ध्यान का तनाव भी कटना आ, शारीरिक कने मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना आ। कई अध्ययनों से पता चलता है कि सप्ताह च 120 मिनट तक अगर तुम प्रकृति च बितांगे हन, प्रकृति च जांगे हन, अपने खेत खलिहान च, तो तुम्हारा तनाव कने रक्तचाप च काफी मात्रा च कमी आंदी है। मनोदशा च सुधार होंदा आ, आत्मविश्वास बढ़ता आ, कने रोग प्रतिरोध क्षमता जी सह भी मजबूत होंगी है। निखा भाई श्रोताओं प्रकृति च बैठी कने अहे शांति का अभ्यास करी सकते हैं, मेडिटेशन करी सकते हैं जो कि आंदे शारीरिक कने मानसिक स्वास्थ्य जी जो ठीक रखती है। अहे बागवानी करी सकते हैं, जो भी तुम्हारा छोटी मोटी खेत खलिहान है थोड़ी बहुत जगह है उस कुछ ना कुछ जरूर लगाना है क्योंकि उसी बहाने तुम अपने खेतों जाते हैं खलिहाना च जाते हैं एक प्रकृति ने जुड़ाव बनी रहता है कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो अहे यही चाहते कि आंदे श्रोता इन ग्रां च रौनक लगाए रखन, अपनी प्रकृति का अपने आस पास का ख्याल रखन, अपने का ख्याल रखन, कने रौनक इन्हें लगी रहन। तो फिर श्रोताओं इन्हें जानकारियां सौगी अज का कार्यक्रम रौनक ग्राएं दियां हुण इत्थों संपन्न हुंदा है। दो अनुमति नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रुणका ग्रायदियाँ। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी श्रोताओ, शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE स्कूल खोले जाएंगे ताकि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन विधायक बनने की परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करवाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी है, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने पूर्वजों ने बना दिया।
0: प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में

0: पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। प्रदेश में बीते रोज हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में दावा किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान, उप प्रधान और सरपंच चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लिया है कि यदि गांव और क्षेत्र का वास्तविक विकास करना है तो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जयराम ठाकुर ने भाजपा को जनादेश देने के लिए मतदाताओं का आभार भी जताया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। विनय कुमार ने यह भी कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के चलते जिस तरह से पंचायत चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है, उसी तरह अगले साल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से जीत कर सत्ता में लौटेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जनसमर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी दो चरण होने बाकी हैं और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
1: अधिकतर जो इसमें चुनावों में, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, दो फेज अभी और इसके होने हैं अगले दो दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है चार नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्वगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैकलोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश देश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आमजन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संगरोह पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर।
1: हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: तो श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि बढ़ती गर्मी और लू से बचने के लिए खुद को कैसे आप हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखना और खान पान आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और जिससे आपको चक्कर आना या आपको उल्टी आना, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पिए। सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी और छाछ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथ हम जो है वो मौसमी फल खा सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा, क्योंकि ये फल जो हैं वो पानी से भरपूर होते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा हमें खान पान में भी बदलाव करना होगा, जैसे कि ज़्यादा मसालेदार और तेलीय जो भोजन है उसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि भारी खाना शरीर में और भी गर्मी पैदा करता है। दोस्तों, धूप और लू से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वो धूप बहुत तेज़ होती है, और इस समय जो हमें

बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकलना भी पड़े, बहुत ज़रूरी हो, तो हम हल्के रंग के कपड़े पहने, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनकर और छाता लेकर या सिर पर कैप लेकर जो है वो हम निकल सकते हैं बाहर। बाहर जाते समय हम अपने आप को धूप के चश्मे से भी बचा सकते हैं। त्वचा को धूप की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए हम कुछ सनस्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं।

0: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। श्रोता और शाम के रात के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: राग अनुराग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
2: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगे।
3: ओह नो,
1: ओह यस,
3: आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। ओके ओके,
1: साइलेंस, साइलेंस।
3: क्या सुनाओ? अच्छा, एस किया है

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ कीवी, तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
0: I don't believe you.
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो अरीब आओ,
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी, ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं भी आई।
3: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
3: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
3: डोंट बी सो सीरियस, आओ बाहर चलो। नीना आई है।
1: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
3: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
1: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
3: लगता ही नहीं, है भी।
1: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
1: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: ये मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई, किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
3: अच्छा।
1: जानते हो, हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
4: कीवी का?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
4: हाँ, तो फिर क्या हुआ?
1: मैं वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
0: एक्सक्यूज मी, आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
1: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना
0: और वो नहीं आई।
1: आई?
0: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
1: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है।
0: हाँ, अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आती।
1: आई सी, आप भी किसी का?
0: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
1: कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
0: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी।
1: देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है, तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग ए कप ऑफ कॉफी विद मी।
0: मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
1: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
0: चलिए।
5: सर,
1: दो कॉफी, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
0: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रहेगी।
1: बस दो कॉफी ले आओ।
5: यस सर।
0: ये जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते हैं?
1: नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
0: वो? फ्रेंड ऑफ माइन।
1: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाएं तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
0: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: शुगर?
1: 1 चम्मच।
0: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी पसंद करता।
1: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
0: तो आप यूरोप हुआ है?
1: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
0: क्या करते हैं?
1: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
0: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना होगा।
1: जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
0: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
1: ओह आई सी।
0: कॉफी अच्छी है?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी। लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस चांस ही नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
1: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
0: Really? How unlucky.
1: आपके दोस्त आए नहीं?
0: आपकी भी तो
1: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
0: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप
1: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
0: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
1: तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। मेरा नाम विक्रम है।
0: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
1: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रही।
0: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
1: अभी?
0: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
1: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
0: बिग शॉट।
1: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
0: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
1: पूछिए।
0: आप एंगेज्ड हैं?
1: ओह नो। आप?
0: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
1: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
0: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
1: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है। मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी कहकर भी पुकारते थे।
0: अच्छा?
1: जी हाँ।
0: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
1: ओह श्योर। वेटर,
0: अगर आप बुरा ना माने तो मैं दे दूँ।
1: आप मुझे शर्मिंदा कर रही।
0: अच्छा, फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
1: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
0: नाइट।
1: गुड नाइट। खूब, बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आध बार

0: मामला तुम नहीं जानते हो।
1: वही जिसका तुम तब इंतजार कर रहे थे।
0: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट में घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
2: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, भाई कम अज कम मुझे तो नहीं करती।
0: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
2: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हो।
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
2: हो सकता है, बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है। और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भाई बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
0: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
2: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों की।
0: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
2: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हो, डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ।
0: ये भी एक अहम वजह है।
2: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों हो?
0: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
2: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
0: हो सकता है, लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
2: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
0: नीना,
2: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
0: अच्छा,
2: अभी, आज ही, इसी वक्त।
0: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है, डिनर टाइम हो रहा है।
2: नहीं, अभी अभी।
0: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयाँ, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की।

कार्यक्रम का अगला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है, शकील आजमी के बोल, चिरंदन भट्ट का संगीत, फिल्म का नाम 1920 एविल रिटर्न्स।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है। संगीतकार रघु दीक्षित।

नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने

0: के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और

उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं CID 909 इस फिल्म का गाना, SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन OP नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।
1: जाने तमन्ना क्या कर डाला आंचल में।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: आसमां को चूमे ओ हो जब चले तो।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे

क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते, और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह।

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा कोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा, जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थीं। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत।

विज्ञान जगत कार्यक्रम में रेडियो की दुनिया से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का तहे दिल से अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर प्रीति, लेकर आई हूं इस कार्यक्रम में आपके लिए विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां। तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत सारी जानकारियां हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, तो भारत मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को जो है सैटेलाइट से तस्वीर जो मिली है उसमें दिल्ली एनसीआर के ऊपर बादल दिखे हैं और अब आपको बताते हैं कि कहां मानसून पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के बड़े हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 3 से 4 दिनों में और आगे बढ़ने की संभावना है। देश में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन राहत की खबर अब आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 23 मई को और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के अतिरिक्त भागों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। भीषण लू और गर्म रातों में झुलस रहे उत्तर भारत की ओर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार जल्द ही आंधी और बारिश के साथ तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि पानी बरसेगा या तूफान चलेगा या क्या होगा। ताजा सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि एक बहुत ही शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मौसमी बदलाव से उन करोड़ों लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है जो पिछले कई हफ्तों से चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली रातों से बेहाल है। तो भी सैटेलाइट से इस तरह की खबर जो है वो मौसम विभाग के पास पहुंची है। अब देखते हैं कि किस तरह तापमान में गिरावट होती है, बारिश होती है या नहीं। श्रोताओं आपको बताएं तो एमडी द्वारा जारी किए गए मौसम सैटेलाइट की थर्मल इंफ्रारेड तस्वीरों ने इस बड़े मौसमी बदलाव की पुष्टि की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उससे उत्तर पश्चिम भारत के आसमान पर बादलों का एक विशाल समूह और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो बना हुआ है। यह सिस्टम सैटेलाइट इमेज में घने बादलों की लंबी पट्टियों के रूप में दिखाई दे रहा है जो धीरे धीरे पूर्व की ओर यानी हिमालय क्षेत्रों की ओर जो है भारत के मैदानी इलाकों की तरफ जो है बढ़ रहा है। हीट ट्रैप में आजकल भारत जो है फंसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहर हीट ट्रैप में फंसे हुए हैं। इन राज्यों में दिन का तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे चिंताजनक बात यह है कि न केवल दिन बल्कि रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। सूर्यास्त के बाद भी तापमान में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह नया पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से आ रही अत्यधिक नमी के साथ टकराएगा। इस टकराव के कारण वायुमंडल में भारी अस्थिरता पैदा होगी जिससे गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। श्रोताओं आपको बता दें तो सबसे ज्यादा बादलों का घनत्व फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के ऊपर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और ओला गिरने की आशंका भी जताई है। यद्यपि यह बारिश उत्तर भारत से गर्मी के मौसम को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगी, लेकिन यह तापमान में एक महत्वपूर्ण गिरावट जरूर लाएगी। विशेष रूप से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके रात के तापमान में कमी आने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस सैटेलाइट तस्वीर में एक और खबर सामने आई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में बादलों के झुंड जमा होने लगे हैं। इस बात का संकेत है कि देश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब हीट वेव की अवधि लंबी और अप्रत्याशित होती जा रही है, जिससे निपटने के लिए कई दीर्घकालिक रणनीतियों की जरूरत है। श्रोताओं आगे विज्ञान जगत कार्यक्रम में बात करेंगे कि कितनी गर्मी इंसान का शरीर सह सकता है और हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक है, इस बारे में कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, तो आप सभी श्रोताओं के रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं ये गीत।

इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं विज्ञान से जुड़ी नई नई जानकारियां। अब कार्यक्रम में आगे बात कर रहे हैं, जिस तरह की हम सभी जानते हैं गर्मियों का मौसम है, तो बात करेंगे कि कितनी गर्मी जो है इंसान का शरीर सह सकता है और हीट स्ट्रोक जो है वो कितना खतरनाक है। तो श्रोताओं, शरीर जो है वो सामान्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रखता है और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्मी और उमस में शरीर ठंडा नहीं हो पाता। 40 से 43 डिग्री सेल्सियस कोर टेम्परेचर पर हीट स्ट्रोक होता है और कुछ घंटों में मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। गर्मी के मौसम में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो लोग डर जाते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव शरीर में गर्मी सहन करने की क्षमता सीमित है। इससे ऊपर जाने पर शरीर का तापमान कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगता है, जिससे हीट स्ट्रोक और मौत का खतरा बढ़ जाता है। मानव शरीर का सामान्य कोर टेम्परेचर यानी अंदरूनी तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। शरीर पसीने, सांस और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए खुद को ठंडा रखता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण माप हैं। यह तापमान और नमी दोनों को ध्यान में रखते हैं। पुराने रिसर्च के अनुसार 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब में 6 घंटे तक रहने पर शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। हालांकि शोध जो 2025 में हुआ है वो बताते हैं कि वास्तविक सीमा इससे भी कम है। स्वस्थ युवाओं के लिए 30 से 31 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पर ही शरीर ठंडा नहीं हो पाता। सूखी गर्मी में यह सीमा और भी कम, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर तापमान पड़ने लगे तो फिर क्या होता है? इससे उमस होती है और शरीर पर बहुत दबाव पड़ता है। शुरुआती प्रभाव की बात करें तो पसीना ज्यादा आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और थकान, चक्कर, सरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। हीट स्ट्रोक में शरीर का कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर पहुंचने पर हीट स्ट्रोक होता है। इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, उल्टी, भ्रम, बेहोशी, पसीना बंद होना या फिर दौरे पड़ना है। 45 से 47 डिग्री सेल्सियस पर अगर नमी ज्यादा हो तो शरीर का ठंडा होने का तरीका लगभग बंद हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, किडनी और दिल पर बोझ बढ़ने लगता है, मस्तिष्क को भी ये चीज नुकसान पहुंचा सकती है। कोर बॉडी टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री में हीट स्ट्रोक शुरू और तुरंत इलाज जो है वो जरूरी है। 42 से 43 डिग्री सेल्सियस में लीवर, किडनी, दिल को स्थायी नुकसान, कई घंटों तक या स्थिति रहने पर मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। 43 डिग्री से ऊपर ज्यादातर मामलों में घातक मौत का समय व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, नमी और एक्सपोजर पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और हाई ह्यूमिडिटी में कुछ घंटों में 2 से 6 घंटों के लगातार एक्सपोजर से स्वस्थ व्यक्ति को भी हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। बुजुर्गों, बच्चों, हृदय रोगियों और मोटापे के शिकार लोगों में यह समय और भी कम होता है। क्लासिक हीट स्ट्रोक से मौत की दर जो है 10 से 65% तक हो सकती है। हीट स्ट्रोक का खतरा जो है बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं, किडनी रोग, हृदय रोगियों, डायबिटीज वाले लोग, जो बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, जोखिम रहता है। तो श्रोताओं, इस समय जो है गर्मी के मौसम में अपना बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन के सबसे गर्म समय में घर से बाहर ना निकलें, पानी और तरल पदार्थ खूब पिएं, ठंडी जगह पर अपना समय बिताएं, रात को खिड़कियां खोल के रखें और भारी काम करने से बचें। व्यायाम या मेहनत दोपहर में ना करें। अगर बुजुर्गों और बच्चों में किसी तरह के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास उन्हें ले जाएं। हीट इंडेक्स चेक करें, सिर्फ तापमान नहीं नमी के साथ फील्स लाइक तापमान भी देखें। वैज्ञानिक शोध स्पष्ट बताते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान खासकर उमस के साथ इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। शरीर कुछ देर तक लड़ सकता है लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर में कोर टेम्परेचर बढ़ने से उसके जो अंग हैं वो फेल हो जाते हैं और मौत हो सकती है। सावधानी और समय पर उपाय ही हर गर्मी से मौत को रोका जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में खुद को और अपने परिवार को गर्मी से बचाना एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। श्रोतो, ये तो कार्यक्रम में हमने बात करी मौसम के बारे में और साथ में हीट स्ट्रोक के बारे में। अब आगे बात करते हैं हिमाचल के सिसु गांव के ऊपर 4068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन झील के बारे में। जी हाँ, ये घेपन झील जो है लगातार बढ़ रही है और वैज्ञानिकों को डर है कि यदि झील फटी तो
21 मिनट में बाढ़ सिसु तक पहुंच सकती है और भारी तबाही होगी। लाहौल स्पीति के सिसु गांव में रहने वाले लोग अब शांतिपूर्ण पहाड़ी जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अटल टनल खुलने के बाद यहां पर्यटकों की भारी भीड़ आ गई है, लेकिन गांव के ठीक ऊपर एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। 4068 मीटर की ऊंचाई पर बनी घेपन झील हर साल बड़ा होती जा रही है। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर यह झील फट गई तो सिसु गांव पर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। सिसु गांव चंद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अटल टनल से निकलते ही यह पहला बड़ा गांव है। कुछ साल पहले यहां बिल्कुल शांति थी, लोग खेती और पशुपालन करते थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में अटल टनल खुलने से यहां रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। पीक सीजन में 5,000 तक गाड़ियां आती हैं। अब नदी किनारे बोटिंग, जिप लाइन, ऑफ रोड वाहन और पर्यटक गतिविधियां चल रही हैं। गांव में होम स्टे और कैफे खुल गए हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बड़ा खतरा जो है छिपा हुआ है, वो है गांव से करीब 11 किलोमीटर ऊपर हिमालयन की घेपन झील, जो कि लगातार बढ़ रही है। घेपन ग्लेशियर झील 1989 में इसका क्षेत्रफल सिर्फ 36.49 हेक्टेयर था, 2022 में बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो गया है, यानी लगभग 3 गुना। वैज्ञानिकों के अनुसार घेपन ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। 1962 से अब तक ग्लेशियर 2.76 किलोमीटर पीछे हट चुका है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि यह झील अति संवेदनशील है। अगर झील फटी तो सबसे पहले सिसु गांव पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने 8 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन भी किया है। सभी में सिसु गांव जो है वो रेड जोन में आता है। सबसे खतरनाक स्थिति में झील फटने के सिर्फ 21 मिनट में बाढ़ का पानी सिसु तक पहुंच सकता है। पानी की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस बाढ़ में सिर्फ पानी नहीं आएगा, भारी मलबा, चट्टाने, पत्थर और ग्लेशियर के टुकड़े भी साथ आएंगे। इसकी चपेट में 34 बस्तियां, 204 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन, 57 पुल और 106 किलोमीटर सड़कें जो हैं आ सकती हैं। मनाली लेह हाईवे, अटल टनल और पूरा पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। बाढ़ का असर चिनाब नदी के रास्ते जम्मू कश्मीर तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर पिघलने के कारण भी बताए हैं। वैज्ञानिक इस पे बताते हैं कि हिमालय का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पहले ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरती थी, अब बारिश हो रही है। बारिश बर्फ को बहुत तेजी से पिघलाती है। 1962 के बाद से घेपन ग्लेशियर हर साल औसतन 53 मीटर सिकुड़ रहा है। झील का बढ़ता पानी ग्लेशियर को और तेजी से पिघला रहा है, या एक साइकिल बन गया है जो लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने झील को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग जैसी संस्थाएं इस पर काम कर रही है और सिसु की कृत्रिम झील पर एक पायलट अलर्ट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सेंसर, कैमरा और सैटेलाइट आधारित चेतावनी की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह अभी टेस्टिंग फेज में है। समस्या यह भी है कि गांव में अभी कोई पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम, सायरन, चेतावनी बोर्ड या स्पष्ट निकासी के रास्ते नहीं है। जमीनी स्तर पर तैयारी अभी चल रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और झीलें बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों को डर के साथ जीना पड़ रहा है। वैज्ञानिक अब जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम, निकासी योजनाएं और जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं रहा है, बल्कि हमारे पहाड़ों, गांवों की जिंदगियों को भी प्रभावित कर रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां फिलहाल साझा कर रहे हैं आपके साथ एक और गीत।

इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने विज्ञान से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, खबरों के ऊपर आपके साथ चर्चा की और अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। विज्ञान ने बहुत कुछ खोजकर हमारे लिए सरल बनाया है, नित्रोज नए प्रयोग, नई तकनीकें, कुछ न कुछ आविष्कार हो रहा है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य और विशालता हमेशा से इंसानों को आकर्षित करती आई है। अनंत तारों, ग्रहों और अकल्पनीय घटनाओं से भरे इस ब्रह्मांड में हैरान कर देने वाले कई ढेरों तथ्य छिपे हैं। तो कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको बताएं श्रोताओं, तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां ध्वनि तरंगों की यात्रा करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप अगर स्पेस में कोई बम भी फट जाए तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसके कारण आप स्पेस में आपके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे बल्कि आपकी आंखों के चारों ओर पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में जमा हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट की कीमत की बात करें तो नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्पेस सूट बनाने में लगभग जो है 100 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। यदि अंतरिक्ष में धातु के दो टुकड़े की सतह पर छूट जाएं तो वे बिना किसी वेल्डिंग के स्थायी रूप से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां की हवा अनुपस्थिति में इनकी सतह पर कोई ऑक्सीकरण की परत नहीं होती। इसके साथ ही आपको बताएं तो धरती से सूरज पीला या नारंगी दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर या असल में सफेद रंग का दिखाई देता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि चंद्रमा हर साल हमारी पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जो है वो खिसक रहा है। सौर मंडल में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जहां बर्फ की जगह धातुओं की बारिश और बर्फबारी होती है, और ये सब जानना संभव हो पाया है विज्ञान की वजह से, शोधों की वजह से। अब आपको बताएं तो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की विशालता का कोई अंत नहीं, कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है अंतरिक्ष। तो श्रोताओं, ये दी आपको जानकारियां कई तरह के शोधों के बारे में, हीट वेव के बारे में, मॉनसून के बारे में, कि मौसम विभाग के पास जो सैटेलाइट में तस्वीरें मिली हैं वो क्या बोलती हैं, और किस तरह से हमारा अंतरिक्ष है, कितनी विचित्र ये दुनिया है, और विज्ञान और वैज्ञानिक शोध हमारे लिए क्या क्या नित्रोज नया कर रहे हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ अब आज का एक कार्यक्रम विज्ञान जगत यहीं संपन्न होता है। नई जानकारियों के साथ पुनः आपसे भेंट होगी, तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

जी श्रोताओ, चांदनी रातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब रात की खामोशी में चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरता है, तब कुछ बातें दिल से निकलकर सीधे एहसासों तक पहुंच जाती हैं और कुछ यादें मुस्कुरा देती हैं, कुछ सपने जाग उठते हैं और कुछ अनकहे जज्बात शब्दों का रूप ले लेते हैं। और आज की इस खूबसूरत रात में हम लेकर आए हैं प्यार, अपनापन और मधुर एहसासों से भरी एक खास महफिल। तो चलिए, मैं हूं आपके साथ संगीता और अब शुरू करते हैं प्यार संगीत और मुस्कुराहटों से सजी हमारी पेशकश चांदनी रातें।

तो श्रोताओ, प्यार एक एहसास है जो शब्दों से कम और दिल से ज़्यादा समझा जाता है। कुछ रिश्ते समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और इसी एहसास को समेटे है ये गीत।

जी श्रोताओं, कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत ही गहरा हो जाता है। कभी एक नज़र ही दिल में नई कहानी लिख देती है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ वैसा ही रहता है लेकिन देखने का अंदाज़ बदल जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। और बात तो बिल्कुल सच्ची है कि दिल के रिश्तों में कोई मोल नहीं होता, फिर भी कभी मुस्कान, कभी अपनापन और कभी यादें अनजाने में बहुत कुछ दे जाती हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ मुलाकातें याद बन जाती हैं और कुछ गीत उन यादों को आवाज़ दे जाते हैं।

जी दोस्तों, जिंदगी का हर दौर अपने साथ नई ऊर्जा, नए सपने और नए मुस्कान लेकर आता है। उसी चंचलता और खुशियों के रंगों को देखना मिलता है हमें हर उम्र में, और युवा उम्र की तो बात ही कुछ और होती है, उत्साह, हंसी और ढेर सारे सपनों से भरी। तो चलिए इसी हल्के फुल्के अंदाज के साथ सुनते हैं ये अगला गीत कार्यक्रम चांदनी रातें में।

जी दोस्तों, देखिए गीतों से भरे इस अंदाज में कैसे हम अपनी भावनाओं को बता देते हैं, और कुछ लोग अपनी बातों से नहीं अपने इसी अंदाज से याद रह जाते हैं। उनकी मौजूदगी ही माहौल में एक अलग सी मुस्कान घोल देती है, और कभी कभी किसी की सादगी, कभी उसका अंदाज दिल को छूने के लिए बहुत ही कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और ये गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने एहसासों से देखते हैं और दिल की बातों को सुरों में पिरो देते हैं। तो इसी के साथ ही आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो संगीता को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। ये हम आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

0: नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए संगीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।